नमस्कार। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 29वीं तिथि तदनुसार दिनांक 20 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 8:55 होने को है। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम रूपरेखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात दिन के 1 बजे आप सुनेंगे

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचार। भक्ति रचना रामचरितमानस गान का समय रहेगा सुबह 9:10 पर। दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे सुबह 9:20 पर। बड़ा लिफाफा कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत ये जल की आप सुनेंगे सुबह 9:40 पर। गाने पुराने जमाने के आप सुनेंगे सुबह 10:00। गाने नए तराने ये कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होगा सुबह 10:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 11:00 से 1:00 तक और तत्पश्चात 1:05 से शाम के 5:00 तक। खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा अपराह्न के 4:30 पर और युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 5:00। नन्हे मुनों का कार्यक्रम बालवाड़ी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों का समय रहेगा शाम के 6:00। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:05 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम के 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 6:28 से 6:49 तक। प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती का समय रहेगा शाम के 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम हेलो गोरबंद का समय रहेगा रात्रि 8:00। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप समाचारों सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00। रात्रि 9:25 से विशेष कार्यक्रम प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत जनसेवा से देश सेवा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:25 पर और 10:00 आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 के अंतर्गत दैनिक झलकियाँ। श्रोताओं ये तो थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। फैटी लिवर स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इस साल अब तक 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। आरपीएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 आज दोबारा आयोजित की जा रही है और सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। कल इस अभियान के नए चरण को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया था। राजस्थान ने फैटी लिवर की स्क्रीनिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साल 2025-26 में 2,61,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस साल अब तक करीब 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग को व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। एनसीडी व्यवस्था के तहत फैटी लिवर की व्यवस्थित स्क्रीनिंग को शामिल किया गया है। मिशन लिवर स्माइल के तहत बीमारी की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के लिए

0: रेफरल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 63 जिला अस्पतालों में मिशन लिवर स्माइल के तहत क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मोटापा कम करने के लिए मिशन ओवी लॉस चलाया जा रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तहत 305 नगर निकायों में कल अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती के बाद कल ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका में कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जयपुर से भाजपा ने सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सुनीता मावर को इस पद के लिए चुना है। उधर जोधपुर में भाजपा ने प्रसन्नलाल मेहता और कांग्रेस ने 4 पार्षदों के नामांकन भरवाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनेगी उसे सभी पार्षद का समर्थन देंगे। वहीं कोटा में कांग्रेस की सुनीता सुमन और भाजपा से अनुसुईया गोस्वामी ने नामांकन भरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश की सामाजिक यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जिससे सोच बदली है और देश के भविष्य को नई दिशा मिली है। आइए जानते हैं बेटियों के प्रति सम्मान, समानता और विश्वास को मजबूत करने वाले इस सामूहिक संकल्प अभियान के बारे में।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करीब 11 साल पहले हुई थी। पिछले एक दशक में इसने लक्षित सरकारी योजना से आगे बढ़कर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लिया है। यह अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे घटते बाल लिंगानुपात और लैंगिक भेदभाव की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अभियान से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बाल विवाह पर अंकुश लगा है और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। ये योजना बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा और सशक्तिकरण तक उसके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर देती है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 दोबारा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा दो पारियों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। 11 जिलों में 666 परीक्षा केंद्रों पर 218,131 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। निष्पक्ष परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी 11 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रदेश में भादवा माह में विभिन्न स्थानों पर लोक देवताओं के मेलों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे मेले में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में बाबा रामदेव के जयकारे और लोक गीतों की धुनें गूंज रही हैं। वहीं कल तेजा दशमी पर लोक देवता तेजा जी की पूजा अर्चना की जाएगी। सवाई माधोपुर में आज से ही मेलों का आयोजन शुरू हो गया है। कल भजन संध्या और भंडारे होंगे। उधर बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि बायतू कस्बे में खेमा बाबा का मेला परवान पर है। लोक गीतों और लोक नृत्यों की थाप के साथ श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है।
2: मेले में बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से यात्रियों की आवक बनी हुई है। खेमा बाबा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। स्थानीय कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां दे रही हैं। मेले में भोपा नृत्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सिद्ध श्री खेमा बाबा लोक आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: सेमीकंडक्टर से जुड़ा 5वां सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन के इस सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इनमें लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 52 देशों के प्रतिनिधि और 150

0: से अधिक वक्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान 56 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, आधुनिक पैकेजिंग उपकरण और सामग्री, पावर इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक मेधा से जुड़ी घोषणाएं भी हुई। उधर एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बात करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो एक चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले से ही प्रमाणीकरण करा चुके हैं उन्हें दोबारा ये कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। जापान में 20वें एशियाई देश खेल में आज भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से भिड़ेंगी। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल क्लार्विन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी के मुकाबले में उतरेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। फैटी लिवर स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इस साल अब तक 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। आरपीएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा आज आयोजित। और सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति रचना रामचरित मानस गान।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक

रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में ये भक्ति रचना। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत की अगली पेशकश में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वरों में ये भक्ति रचना।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत जल की बड़ा लिफाफा।

0: रामू भैया, ओ रामू भैया, लो तुम्हारी चिट्ठी आई है।
1: लाओ भैया। भौजी ये देखो आपकी चिट्ठी आई है, लीजिए।
2: आई भैया।
1: लो भौजी ये चिट्ठी है आपकी, और मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है और बस निकल जाएगी।
2: क्यों भैया मजाक बनाते हो, मुझे अनपढ़ को कौन चिट्ठी पत्री देगा भला?
1: नहीं नहीं भौजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो ये आपका नाम लिखा है, सरस्वती जांगिड़।
2: हाँ, तो फिर जल्दी जल्दी खोलकर पढ़ो ना भैया, क्या मुसीबत आई है?
1: नहीं भौजी अभी तो मुझे जरूरी काम है, बस छूट जाएगी, आप संभाल कर रखो, शाम को आकर के सुना दूंगा मैं ये चिट्ठी में क्या लिखा है।
2: पढ़ रामू भैया, हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया, ये चिट्ठी किसकी आई है, कैसी मुसीबत है, मैं क्या करूं? रामू भैया को जल्दी थी, अरे पढ़ दो पढ़, रुक जाते तो कौन सी मुसीबत आ जाती, कोई सुने ही नहीं मेरी बात। तो
3: कौन है? अरे दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ।
4: भाभी रामू भैया अंदर हैं?
2: अरे नहीं किसना, अभी अभी बस शहर गए हैं, पर तुम तनिक अंदर तो आओ, अरे कुछ जरूरी काम है तुमसे।
4: बोलो भाभी आज मुझसे क्या काम आन पड़ा है?
2: अरे क्या बताऊं भैया, रामू तो जल्दी में था, ये चिट्ठी हाथ में धरी और चल दिया, अब मैं सोच के मारे खुले जा रहे हूँ, न जाने क्या मुसीबत है, मुझे खत किसने भेजा, घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, सोच रही थी अब ये मैं किससे पढ़वाऊँ,

0: अच्छा हुआ तुम आ गए। भैया सुनो, जरा जल्दी से पढ़कर सुना दो, कौन सी मुसीबत आन पड़ी है?
1: भाभी क्यों मजाक कर रही हो, मुझे तो तुम जानो ही हो कि माँ बाप के लाड़ प्यार ने स्कूल का मुंह दिखाया ही नहीं, सो भाभी मेरे लिए तो काला अच्छर भैंस बराबर ही है।
0: हाय कृष्णा, आज तुम भी अनपढ़ हो। मैं सोचूं मैं ठहरी और अज्जात, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, पर इसका तो अब बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे।
1: भाभी तुम ही बताओ मैं क्या करूं, माफी करो मुझे तो। हाँ पर चिट्ठी जरूर पढ़वा लेना किसी से, ये बड़ा लिफाफा देखकर तो लगे है कि मुसीबत भी कोई बड़ी ही आई है।
0: हाय राम, ये क्या कह रहे हो? हे राम जी, सब कुशल मंगल रखना। कृष्णा जरा तुम ही चौक से किसी को भेजना मेरी चिट्ठी बांचने के लिए। हे राम तेरी दुआएं है, ये बड़ा लिफाफा बड़ी मुसीबत क्या होगी।
1: अच्छा भाभी चलता हूँ, देखू जाकर कोई मिलता है तो भेजता हूँ। मास्टर जी और बच्चे सब तो स्कूल में होंगे, पर स्कूल भी तो 2.5 कोस दूर है।
0: देखो भैया जरूर भेजना किसी को, भूलना नहीं। अरे सुनो, ना हो तो मास्टर जी को ही भेज दो।
1: अच्छा भाभी।
0: सच बापू ने कितना कहा था, पढ़ ले सरस्वती पढ़ ले, अरे थोड़ा अपने नाम की भी इज्जत कर। पर तब तो पढ़ी नहीं, अब रो बैठ के क्या करूं, अपनी तकदीर फूटी है। तब तो गोबर थापड़े और बेच चुराने से फुर्सत ना मिली मुझे। किसान कह रहा था बड़ा लिफाफा है बड़ी मुसीबत होगी। हे राम जी, हे राम जी, हे राम।
2: अरे
0: जी।
2: सरस्वती, ओ सरस्वती।
0: अरे सुगना।
3: अरे अरे अरे अरे अरे अरे, रो मत रो मत सरस्वती। पर मैं यूं पूछूं, किशन कह रहा था कि कोई बड़ा लिफाफा तेरे नाम आया है। हे राम, मुझे तो लगे है कोई बड़ी मुसीबत आ गई है सरस्वती।
0: अरे मैं तो मर गई।
3: ना ना ना, रो नहीं रो नहीं।
0: किशन कह रहा था, हे भगवान, अरे देख कितना बड़ा लिफाफा आया है, राम जाने इसमें क्या लिखा होगा, किसने लिखा होगा। अरे मुझे कोई खत भेजेगा भी कैसे, सब जाने कि मैं तो अनपढ़ हूँ, सब घर वाले तो मेरे गांव में ही हैं, फिर ये किसकी चिट्ठी है? सुगना, अरे सुगना मेरा तो जी घबरा रहा है, आंसू बार बार ढलकते को आते हैं, न जाने कैसी मुसीबत होगी सुगना, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। सर पहले नहीं जाना कि पढ़ना कितना जरूरी है, नहीं तो पढ़े लेती दो आकर।
3: अरे अरे सरस्वती चुप हो जा रे, चुप हो जा, मैं क्या करूँ, मेरी भी तो तेरी सी ही हालत है रे, मैंने भी तो कभी किताब भी नहीं छोई। अरे सुन, तू ही याद कर, कोई तेरा रिश्तेदार बाहर होगा ही।
0: अरे हाँ, मेरे मामा रहते हैं कलकत्ते में। अरे आजकल बखत भी कैसा खराब है, किसी का भरोसा नहीं, राम जाने मामा जी को क्या हुआ होगा।
3: अरे ना रे ना सरस्वती, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा।
0: नहीं सुगना, एक ही तो मामा थे, बेटी की तरह लाड़ करते थे, आज ये क्या हो गया मामा जी।
3: चुप हो जा सरस्वती, चुप हो जा रही सरस्वती, चुप हो जा सरस्वती, चुप हो जा
4: मामा जी।
3: ना ना रो।
4: हे राम, अभी उम्र ही क्या थी उनकी, सच में बहुत बुरा हुआ, अभी तो छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे रहेंगे बेचारे।
5: सरस्वती को तो बेटी ही मानते थे।
3: हाँ देखो ना कमला बहन, बेचारे पे तो मुसीबत का पहाड़ ही टूट गया, पता नहीं कलकत्ते से कैसा खत आया है, क्या कहूँ कमला बहन।
4: मैं ये कहूँ कि सब रोती ही रोगी है सरस्वती को।

0: सरस्वती को चुप करा हाँ। और कमला सुनो थोड़ा सा उधर से इसके पति को भी बुला लाना दुकान हाँ। से तुम जाके
1: देखो हाँ। गजब हो गया ना, कितना गजब हुआ बेचारी सरस्वती के बूढ़े नाना नानी को कौन सेवा करेगा उनकी वहाँ पे।
2: हाँ लोग कहते थे वो कि मैं तो इसके बेटे को अफसर बनाऊंगा, अफसर बनाने से पहले ही चले गए बेचारे।
0: अरे अफसर तो बन गया था पिछले बरस ही, पर हम तो बिहार तो जाते हैं तो कम से कम वो संभालता तो सही घर वालों को भी।
2: चुप हो जा सरस्वती मैं, चुप हो जा,
0: हिम्मत से काम ले सरस्वती, वो देखो किशन आ रहा है।
3: अरे अरे भीड़ क्यों लगाई है भाई,
2: आओ किशन भैया
3: दूर हटो भाई, देखो मास्टर जी आए हैं। क्या खत पढ़वा लिया है, मैं कहता ही था कि कोई बड़ी मुसीबत ही होगी, तभी सब रोए धोए जा रहे हैं। मास्टर जी आइए आइए अंदर चलते हैं।
4: किशन तो फिर अब मेरा क्या काम, चलता हूँ, लगता है खत पढ़वाई लिया है किसी से।
3: नहीं मास्टर जी आप आए हो तो एक बार पढ़ ही जाओ चिट्ठी, तसल्ली हो जाएगी हम सबको। मैं भी आया। अरे भाई थोड़ा हटो, अंदर आने दो भैया, आने दो।
0: हाँ।
1: अरे भाई भीड़ को हटाओ सब, एक तरफ हो जाओ सब, रास्ता दो मास्टर जी, आइए पढ़िए मास्टर जी।
3: भाभी ओ भाभी ये चिट्ठी किसी से पढ़वाई, पता चला कौन गुजरा?
5: अरे कृष्णा, अरे कृष्णा मेरे मामा जी।
3: पर भाभी ये लिफाफा तो बंद ही धरा है और तुम रोए जा रही हो, चिट्ठी किसी ने खोली भी नहीं अभी तक, हद है।
5: पर भैया तुम्ही ने तो कहा था बड़ा लिफाफा है, बड़ी मुसीबत होगी।
3: पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बिना पढ़े रोना धोना शुरू कर दिया जाए, क्या राई का पहाड़ बना के रख दिया।
0: लिफाफा खोला भी नहीं अभी तक।
3: बिल्कुल नहीं खोला, और मैं मास्टर जी को बुलाने गया था कि अभी पढ़ेंगे मास्टर जी आकर चिट्ठी। देखो मास्टर जी आ भी गए। मास्टर जी, ओ मास्टर जी ये लिफाफा तो अभी खोला भी नहीं इन लोगों ने और रोना धोना शुरू कर दिया है, जरा आप भीतर आइए।
5: मास्टर जी जरा पढ़ो तो, क्या हुआ मेरे मामा जी को, कितना बड़ा लिफाफा है देखो तो।
4: रामू की भौजी,
5: बड़े मुझसे
4: रामू की भौजी, पहले रोना धोना छोड़ो, लिफाफा थमाओ, लाओ दो पहले खोलो तो जरा। अरे अरे अरे ये लो भौजी, कमाल हो गया, ना जांचा ना परखा भाई, ने जांचा ना परखा और कोहराम मचा दिया।
0: अरे तो क्या हुआ मास्टर जी?
4: ये तो कुमकुम पत्री है।
0: कुमकुम पत्री?
3: क्या कहा?
6: कुमकुम पत्री? पर ये भेजी किसने?
4: अरे तुम्हारे मामा ने ही भेजी है, बेटे गोपाल के ब्याह की कुमकुम पत्री। हाँ तुम सबको बुलाया है।
0: और देखो सरस्वती, देखो देखो तो रोने धोने मचा दिया इसने,
1: बिल्कुल देखो उल्टी बात हो गई बिल्कुल,
0: अब तो लड्डू बांटो जाके सबको।
3: हाँ भौजी लड्डू बांटो, नहा की सबको रुला दिया।
5: भैया यही तो है अनपढ़ होने का नतीजा।
0: और ये भूरे लिफाफे में क्यों भेजी वाला उन्होंने?
4: अरे रजिस्ट्री करवाई है ताकि पहुंचने की रसीद उन्हें मिल जाए।
0: अरे क्या कहा, रजिस्ट्री में कुमकुम पत्री आई है।
1: देखो भाई और सरस्वती बहन ने तो हल्दी कर दी, सरस्वती बहन आई कुमकुम पत्री का, अब मामा जी को लेके रोने ही रोने शुरू कर दिया।
0: अरे अरे अब तो देखो सास ससुर आ रहे हैं तुम्हारे।
5: अरे भैया
0: अरे तो पहले चिट्ठी खोल तो लेता।
1: पर बहन खोलता कौन, सभी ध्वनि अक्षर है यहाँ पे।
0: सच्ची कह रही हूँ कमला बहन, यहाँ तो सबके लिए ही काला अक्षर।
3: नाहक सबको रुलाया है भाभी, अब तो लड्डू खिला ही दो।
5: अरे तुम्हें तो बोले थे बड़ा लिफाफा है, बड़ी मुसीबत होगी।
3: अब मुझे क्या पता था भाभी कि कुमकुम पत्री भी तुम्हारे मामा भूरे लिफाफे में भेजेंगे।
4: भौजी सबकी कही सुन ली तुमने, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी।
5: वो क्या?
4: भैया अगर कोई भी उम्र हो, औरत या मर्द हो, दो घड़ी वक्त निकाल कर तनिक अक्षर ज्ञान तो ले लो, ताकि यूं हंसी की बात पे कोहराम न मचे।
1: मास्टर जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आज से ही सब लोग सारे लोग गांव के आपके पास आ धमकेंगे पढ़ने के लिए।
4: जरूर सुनो, जरूर जरूर, पर भूल मत करना, और किशन तुम भी आना है?
5: अरे किशन
3: क्या कहा मास्टर जी?
5: किशन किशन मेरी बात तो सुन, वो देख मेरे सास ससुर दौड़े चले आ रहे हैं, सुन खूब ही परेशान दिख रहे हैं।

0: मैं अंदर जाती हूँ।
1: क्या ताऊदाई आप पहुंचे काम छोड़कर? नहीं नहीं मैं भागता हूँ मास्टर जी, आप ही संभालना।
2: किशन किशन सुनो तो। अरे यूं भागो मत, वे भी तो यही कहेंगे कि किशन काश तू ही पढ़ लेता।
1: कह तो दिया मास्टर जी शाम को आ जाऊंगा, पर अभी तो माफ ही करो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में जल की बड़ा लिफाफा। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है। लीजिए सुनिए हरिहरन के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन के स्वर में ये गज़ल। श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के।

ये है पहली पेशकश लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म बहारों के सपने से। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इंतजार करेंगे।
7: लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म बहू बेगम में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म बहू बेगम का ये नगमा, जिसे संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और इसे लिखा था शाहिर लुधियानवी ने। लीजिए सुनिए आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी के मिले जुले स्वरों में फिल्म बैराग का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी के, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के मिले जुले स्वरों में फिल्म बरखा बहार का ये नगमा। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत में। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: लीजिए सुनिए तुलसी कुमार और सोनू निगम को फिल्म दबंग 2 में। इरफान कामिल के बोलों को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के मिले जुले स्वरों में फिल्म किस्मत कनेक्शन का गीत। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 11 बजे लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम

0: द्विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
0: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
1: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में, इतिहास में जाने वाले हैं।
1: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
0: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
1: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमयी अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
0: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी
1: जी।
0: और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
1: अच्छा
0: जी,
1: महाराष्ट्र से थी।
0: जी हाँ, आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में, जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है, वहाँ उनके पिता रहा करते थे।
1: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत जी, कि दुर्गा खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने की बहुत ही
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के,
1: क्या बात,
0: फिल्म का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दें श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा, यानी अयोध्या का राजा, और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है
0: जी,
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय से हम चुनकर लाए हैं।
0: अवश्य, और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था।
2: जी, तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलास खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल
2: जी,
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले। असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चरणों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ,

0: बिल्कुल झगड़ेलू नहीं है, मैं आपको
1: उसमें
0: इस बात
1: झगड़ेलू सास
0: का
1: कहता है।
0: ओफो बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आपके लड़के से शादी नहीं करती।
1: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
0: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम देना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
1: रसोई वगैरह का भी शौक है आप?
0: हाँ, मुझे बहुत शौक है महाराष्ट्रीयन पद्धति का। और पद्धति मैं नहीं जानती
1: वो
0: लेकिन और लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ, मालूम नहीं।
1: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
0: मुझे गाने का शौक था ही
1: जी,
0: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
1: अच्छा, विदेश भी गई हूँ?
0: हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी और जगह भी हुआई, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
1: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी जरूर?
0: हाँ, मैं काफी लोगों से मिली।
1: और तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज्यादा तरक्की पर है भारत की निस्बत?
0: हाँ, ये जरूर है कि वो हमसे आगे बढ़े हैं, हालांकि टेक्निकली मैं समझती हूँ कि उनको काफी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का।
1: जी, जी।
0: एक्सपेरिमेंट से लोग तो बढ़ ही जाते हैं आगे, हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता।
1: अच्छा, अभिनय की दृष्टि से?
0: अभिनय की दृष्टि से मेरा ख्याल है हमारे यहाँ वाकई बहुत अच्छे और बहुत इंस्टिंक्टिवली जो लोग हैं आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा आर्टिस्टिक है। एक तो हम ज्यादा सेंटिमेंटल भी लोग हैं, भावना प्रधान हम लोग हैं, और वो भावना हम कभी दबा क्यों नहीं रखते, बताते हैं।
1: अच्छा, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जिसको आपको याद करके हंसी आ जाती है अभी?
0: मुझे तो अभी भी उस बात की हंसी आती है जब मैंने पहले भवानी साहब के पिक्चर में काम किया था, तो मैंने समझा न जाने मैंने कौन सा बड़ा काम किया, और बड़े शौक से उम्मीद से मैं वो पिक्चर देखने गई। जब देखा वो इतना भयानक था कि मैं वाकई बहुत डर गई। न मैंने मेकअप किया था, न मैंने कुछ इसके बारे में सोचा था। जिस उम्मीद से मैं गई थी और जो मैंने देखा, उसके जब याद मैं करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वाकई लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जब देखते हैं तो क्या देखते हैं। काश के लोग अपने आप को ऐसे देख सके।
1: अच्छा दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी।
0: नहीं शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चंद लफ्ज कह सकी। नमस्ते।
2: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने। ये हमारी एक खास धरोहर है और अब आगे बढ़ें। हमारी बातचीत में हमने इप्टा की बात की थी जब हम दुर्गा खोटे जी को याद कर रहे थे। इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं। उनके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन उस कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं।
3: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से।
2: जी,
3: और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया।
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक।
3: जी हाँ, और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए।
2: क्या बात है?
3: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला।
2: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में जिंदा हैं। शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो दिखते
3: और
2: हैं,
3: और रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता, और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं। और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब, साहब हैं या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला।
2: तो सकीन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं, और इनकी एक रिकॉर्डिंग

0: हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सत्येन कप्पू जी को।
1: मेरा यानी सत्येन कप्पू का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ जिन लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली है और जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिराक गोरुपुरी साहब की। लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बे आग भी जल जाते हैं जलने वाले। ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया और जब बंबई आया तो यहां मैंने श्री बल्लाल साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमल जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं कुछ तो निशानी छोड़ जा।

0: बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर की जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा हो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली मुझे परेशानी हुई।
1: अरे माझी

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपनी एक फिल्म की। फिल्म का नाम था कुली, मनमोहन देसाई जी उसके डायरेक्टर थे। तो एक सीन आता है कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गांव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूँ। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बता ले कि भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना है हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थार से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया, मैं बाहर आया। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। अब यकीन मानिए मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अब ये एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता। कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

0: सत्येन कप्पू जी की आवाज हमने सुने
1: जी,
0: और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे, और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
3: ये 6000 सालों पहले देखा था,
4: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियसामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री

0: काड़ी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म युगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा। चौहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: नानू दट्ट अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
1: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
1: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर.के. नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़ा रॉकेट कन्फर्म आयु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೆ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. ಸಿನಿಮಾ ಔರ್ ಕಲಾ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಯೋಗದಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೆ ಸಾಲ್ 2025 ಮೇ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಕೋ ದೇಶ ಕೆ ತೀಸರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಗರಿಕ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ್ ಸೆ ನವಾಜಾ ಥಾ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಕೋ ದಾದಾ ಸಾಹಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಢೇರ್ ಸಾರಿ ಬಧಾಯಿಯಾಂ. ये था संपादकीय. अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा.
4: हंस क्यों रहे? हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उन मुर्ख के रिसालदार के नगड़ पोते मीर रोशन अली में
5: जरा होश में आइए हुजूर. जरा हाँ
6: सुनिए मेरी बात. सुन
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है. जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना. बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी. साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं. आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए. प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर. निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए. इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी. कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया. सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं. सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई. ये फिल्म कामयाब रही. इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया. इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था. इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है.
7: संत

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: चला मैं तेरा कमली कमली बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना?
2: और बड़ा पुत्रा दे।
1: चल तू इधर रोज आती है।
3: हाँ।
1: कल ना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
3: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली गल सुन।
3: क्या?
1: तेरी कोमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: हाजत हो गया,
4: जाओ।
3: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली? अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974।
5: प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव

0: पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन, कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है,
1: जी
0: मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब,
1: क्या बात,
0: या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो
1: जी
0: गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्मेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दीना की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे
1: जी
0: गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब
1: चालू
0: लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब
1: वाह,
0: ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने,
1: जी
0: इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो
1: जी
0: वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है,
1: ओ
0: तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी, के जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं,
1: जी
0: फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा
1: क्या
0: मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा, छोटा सा तालाब को
1: जी
0: बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए, तो घर

0: चेंज करने पड़े वरना वही रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो। इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात।
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता,
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या

0: Ишиш. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।

इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी। कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है।
1: जी
0: हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले लें।
1: बिल्कुल, श्रोताओं अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा।

0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

फिर तेरी कहानी याद आई, ये था फिल्म का नाम। कुमार सानू की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। कतिल शफई ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: केके को आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे हिंदी समाचारों के बाद FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की ओर से किया जा रहा है। सत्र के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित रहेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य केवल नए अस्पताल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में मजबूत और एकीकृत स्वास्थ्य तंत्र विकसित करना है। उन्होंने स्वास्थ्य तंत्र में सुलभता, गुणवत्ता, किफायती उपचार, आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन और संस्थागत विश्वास का समावेश करने को कहा। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जयपुर और बड़े शहरों से आगे क्षेत्रीय केंद्रों और छोटे शहरों तक किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अस्पताल, जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, आपातकालीन सेवाएं, रेफरल व्यवस्था और डिजिटल संपर्क का समन्वित विकास पर जोर दिया। पेपर लीक के कारण रद्द की गई साल 2021 की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के 11 जिलों में दोबारा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर सुबह से ही केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सख्त जांच व्यवस्था देखने को मिली। सुबह 8 बजे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। ये परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और प्रतिबंधित सामग्री को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। राज्य के 11 जिलों में परीक्षा के लिए कुल 666 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 218,131 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में जीएसटी और वैट अनियमितताओं पर वाणिज्यिक कर विभाग ने 11 प्रतिष्ठानों पर सर्वे और निरीक्षण कर 5,55,00,000 रुपए की देनदारियां निकाली हैं। 15 से 17 सितंबर के दौरान चले इस अभियान से संबंधित करदाताओं ने अब तक 1,49,00,000 रुपए से अधिक की राशि नकद जमा करा दी है। कई मामलों में दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए और आगे की जांच के लिए समन भी जारी किए गए। भारत की एलावेनिल वलारविन ने जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने पहले जीते गए टीम रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक भी अपने नाम किया। वहीं भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने हीट राउंड में 54.85 सेकंड का समय लेकर पांचवां स्थान हासिल किया। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की है। सवाईमाधोपुर के रणथंबोर रोड पर आज सुबह एक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार शेरपुर निवासी युवक जंगल सफारी का वाहन चालक था, जो सुबह मोटरसाइकिल से नेशनल पार्क जा रहा था। एफसीआई गोदाम के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में मॉनसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। मॉनसून ने बीकानेर के खाजूवाला, फलौदी और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों से वापसी का चरण शुरू किया। हालांकि राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से अभी भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 7 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में 12,
उदयपुर, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। 12 जिले के अटरू में

0: सबसे अधिक 29 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हो या रास्ते का, यदि हम सफर अच्छा हो तो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। वो दूर से उगता हुआ सूर्य, नीला आसमान, पहाड़, नदी और शाम को ढलता हुआ सूरज और बाद में चांद, ये सब प्रकृति के नजारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं, शाम ढली तो कोई ख्वाब सा मिला, राहों में जैसे कोई जवाब सा मिला, न वादा हुआ न इजहार की बात, बस साथ चला कोई और सफर खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफर भी एकदम खास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर में एक लड़की और एक अनजाने व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफर करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाह हो तो सफर कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, जरा साझा कीजिए अपने संदेशों के जरिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतजार और साथ ही ये गीत।

कहेगा कोई अफसाना बन के रहेगा कोई अफसाना छिड़ के रहेगी कोई कहानी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग, और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतजार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं, तो धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है, और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है, आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफर का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज का नाता जो है सुरीला सफर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मजा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता

0: सकते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल। और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफर के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: हेलो। हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम। और ये गीत आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, से लिखा राजेश रोशन का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फेरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की जरूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई, लेकिन नो टेंशन, विविध भारती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफर के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा।

0: जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटिया जवाईसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुतीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है, उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था। और यही तो बात है, विविध भारती मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर विविध भारती से।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीतमय सफर के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूं और आपके साथ ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती है कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि

80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे। और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के संग।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत आपने सुना शर्मीली फिल्म से, नीरज ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ, फर्क तो बहुत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए और आप बने रहें हमारे साथ। इस प्रोग्राम से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं, और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावना।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है, तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें बोलती हैं और संवेदनशील मन सुनता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिमी

0: एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार हैं। उन्होंने सभी से इस अभियान में

0: शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
3: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केवीके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
2: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
6: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
7: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी

0: किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद कर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज़ में गीता भी आप सुन रहे थे। साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से शकील बदायूनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मन चाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।

जानी दुश्मन इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार, भारती, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बैन ने। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल ने। ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालों उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर, सत्यम सिंह, अंशराज एवं उनका समस्त परिवार। संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी, इशिका, फागुराम यादव ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अर्णव आनंद, सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी, और साथ ही आनंद।

मन्नाडे की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छे गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था। और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा, प्रतीक ने इसी गीत की और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश भोराखड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मूलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
3: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: अंतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चीटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
0: नहीं नहीं, और न तोड़ो।
1: क्यों रोकती हैं?

0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमद वन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे, तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूं। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर?
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासवदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ, संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेठी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा!
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े। हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे, कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
2: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
0: हाँ हाँ, वही तो है चेटी। अवंतिकी, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना? तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्यपुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
2: आओ यही करें राजकुमारी।
3: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
4: कैसे जाना वसंतक?
3: अरे इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके कि फूल तोड़ लिए गए।
4: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
3: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
4: अच्छा चलो।
2: अरे ये वसंतक मूर्ता हमें सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ, ऐसा ही करो।
3: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
4: अरे अरे अरे, मधुकरों को भया तो न करो वसंतक। हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
3: जी
2: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
0: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्यपुत्र बैठे हैं।
1: आर्यपुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, भाग्य की कृपा।
2: अरे आर्य अवंतिका के आंखों में ये आंसू कैसे?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं जेठी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।

0: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
1: पूछो बसंतक।
0: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
1: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो बसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
0: मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
1: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो, तुम्हें कौन प्रिय है?
0: मेरे लिए तो दोनों समान है प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी, दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ, उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु। वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए? आर्य वसंतक कहाँ है?
1: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
0: अब देवी वासवदत्ता कहाँ है? वे तो कभी की परलोक सिधार।
1: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
0: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
2: अवंती के, आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहां से निकल चलें।
3: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरें, मैं ही यहां से चली जाती हूं।
2: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चले। सचमुच जाऊं?
3: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
4: आर्य की जय हो।
1: पद्मावती बैठो, जल ले आए वसंतक।
0: जी
1: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
4: अथवा किसी दुख से?
1: नहीं पद्मावती, नहीं।
0: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
1: ठीक कहा वसंतक, आओ चलें।
5: मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ।
4: आई।
5: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
4: राजकुमारी कहाँ है?
5: उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ही संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके सैया समुद्र गृह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारें।

0: चलो बसंत
1: जी।
2: ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
0: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
2: पुष्पमाला?
0: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
2: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां सैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
0: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो, ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
2: तो देव, उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें?
0: हां, यही ठीक है। मित्र वसंतक
2: जी,
0: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
2: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
0: क्या कहा, उज्जैनी?
2: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
0: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
2: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
0: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
2: हाँ।
0: नगर कांपिल्य था।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लू मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था, नगर कांपिल्य। राजा ब्रह्मदत्त था, नगर कांपिल्य। कांपिल्य राजा था, नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती, अस्वस्थ हो गई। अरे, यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता,
3: ये तो आर्यपुत्र है, यहां कैसे?
0: प्रिय,
3: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी, वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंती राजपुत्री,
3: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहां कोई नहीं, एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लूं।
0: शिष्य,
3: बोल रही हूं स्वामी, बोल रही हूं।
0: क्या तुम कुपित हो?
3: नहीं, दुखी हूं।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
3: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता।

0: प्रिये, प्रिये।
1: आर्य की स्वप्न अवस्था है, यहां देर से बैठी हूं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा।
0: प्रिये,
1: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
0: ठहरो ठहरो ठहरो वापस ठहरो वासुदेव ठहरो। अरे ये क्या है? ये क्या? ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
2: राजन जाग गए आप?
0: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
2: क्या?
0: वासव दत्ता जीवित है।
2: हाँ वासव दत्ता कहाँ, वे तो कभी की परलोक से हार गए।
0: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
2: समझा समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासव दत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
0: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
2: समझा राजन समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
0: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र देखो, मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां भी रोमांच है।
2: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
3: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कोशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए हैं।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कुल वीणा बजा रहा था,

0: घोषवती का स्वर? यह तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहां पाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता वो कहां है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: ओह विजया, जा निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूं आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहां से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या

0: द्वार पर खड़े हैं महाराज।
1: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
2: आर्य पुत्र की जय हो।
0: आर्य पुत्र की जय हो।
1: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
3: सकुशल हैं और आप सबके कुशलार्थी हैं।
1: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
3: महाराज उदयन, शत्रु द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
1: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ, बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासवदत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
0: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
1: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल वासवदत्ता बस वो ही नहीं है।
0: राजन संताप न करें।
3: स्वामी धैर्य धरे, महासेन कन्या वासवदत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
1: वासवदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
0: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है वासवदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे, फिर बिना शिक्षा के बहाने बिना अग्नि साक्ष आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हो।
1: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही, उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
4: आर्य पुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
0: ये देखिए पद्मावती जी।
4: अरे
1: देवी, क्या बात है?
4: आर्य पुत्र, आश्चर्य, देवी वासवदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
1: यहाँ?
4: हाँ आर्य पुत्र।
1: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
4: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
1: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप सामी मिल ही जाता है।
0: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
4: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
0: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
4: जी।
5: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
5: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
0: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
0: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासवदत्ता है।
1: मेरी प्रिया वासवदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासवदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
5: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य है, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सा दृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनिका हटा दो।

0: स्वामी की जय।
1: महामात्य
2: आर्य पुत्र की जय।
1: वासुदत्ता, अरे अरे ये तो हमारे महाअमात्य यौगंध रायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
0: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
3: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम दूतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है।
4: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
5: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
3: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
0: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
3: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
0: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
3: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
0: हाँ राजन, सभी जानते थे।
3: ओ
0: महाराज उदयन, रेभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
3: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे, और हमारे साथ वासुदत्ता भी होंगी।
0: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा स्वप्न।

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: जोड़ी उत्तम जगदीश की, पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
4: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
5: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
6: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की,
7: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के, संगीतकार

0: उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
1: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
1: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
1: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
1: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी, हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
0: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
1: हाँ,
0: और दौलत को ठुकराया।
1: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
0: अच्छा, ये लखनऊ की बात
1: है? ये लखनऊ की बात है। और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब
0: जी,
1: आपने नाम शायद सुना होगा
0: जी।
1: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी, मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज मुझमें भी आई। और मुझमें डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था
0: बाबा।
1: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे
0: जी,
1: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरे को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी। बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
0: एक झटके में हवेली से बाहर।
1: एक झटके में हवेली के बाहर और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं। बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
0: अच्छा
1: जी,
0: क्या बात है।
1: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
0: तो पहले आपने मटका बजाया?
1: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया
0: जी जी,
1: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया
0: जी,
1: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
0: बाकायदा यात्रा।
1: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
0: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
1: और इस
0: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान?
1: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
0: जी,
1: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
0: पूरे देश में घूमे।
1: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
0: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन

0: करते थे।
1: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
0: जी,
1: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
0: क्या बात है।
1: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
0: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे।
1: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
0: बहुत सख्त थे? डांट मार वाला मामला था?
1: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे। और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
0: जी।
1: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
0: वाह, क्या बात है।
1: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता। मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
0: वो तो मैंने देखा है आपको करते हुए।
1: लेकिन हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर। टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे। हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा। हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर, तो जी वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे पहुंच गए।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ, रायपुर, फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले
1: गए, नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
1: 12 वर्ष।
0: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं,
0: डैडी नाम
1: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा,
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा,
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ।
1: और मदर थी

0: वाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे 46 से।
1: जी जी
0: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में ही इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
1: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप।
0: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई,
1: जी
0: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे।
1: जी
0: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से या 2 साल सीखा हूँ,
1: क्या बात है।
0: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है,
1: जी
0: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया। वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको
1: वो
0: बताऊंगा,
1: कहानी में आगे आएगा।
0: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए,
1: बाप रे, 10-12 घर।
0: 2 साल में,
1: जी
0: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही,
1: जी
0: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
1: बाप रे बाप,
0: ये लोग सुन के बहुत हैरान हो गए,
1: 13.5 घंटे।
0: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक,
1: ओहो
0: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है,
1: अरे बाप रे, तो
0: 4:30-5 बजे उठ के।
1: कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
0: नहीं,
1: बच्चों के
0: कभी
1: साथ खेलें।
0: कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना, खत्म होगी
1: हाँ,
0: बात,
1: बस उसके आगे फिर
0: माँ
1: तो
0: ने कहा है खत्म होगी बात,
1: जी
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है,
1: कितनी सुंदर बात है ये।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।
1: मेरे

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन। हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े एडिटर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
1: जी जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए,
1: हाँ
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल,
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: का
1: वो भी
0: कोई
1: मोहम्मद शफी के साथ।
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम विदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है,
1: अच्छा
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग।
1: जी
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद साहब माहिम में, और

0: वहां जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग का, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए,
1: जी
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है, तो आके कुर्सी में बैठ गए। तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आ जा आ जा, उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे
1: फिल्म
0: वो,
1: इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती
0: बहुत बड़ी हस्ती थी।
1: जी।
0: तो उन्होंने, हाँ पीटर आ जा आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस, कहा ये जो तुमने उस बजाई बजाओ,
1: नोटेशन रख दिया।
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4, मैं चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं था। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटेशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे मेरे से फट से आ, तुम बजाओ तुम बजाओ तुम। और मैं नहीं बजा सका उससे,
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं, मुझे हुआ क्या? शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया, तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी
0: 10 रुपए पूरे
1: जी।
0: दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए। तो मुझे बोला, ये 5 रुपए जो दे रहा हो ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे, शायद फटी होगी,
1: जी
0: मुझे ध्यान
1: जी
0: नहीं है।
1: जी जी
0: तो मैंने घर में जाके बोला, 15 रुपए, 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई,
1: इतनी बड़ी रकम।
0: इतनी बड़ी रकम कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं बोला, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, गायूर जी को माथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है,
1: 12 बरस की उम्र में।
0: नहीं 14 बरस हो गया,
1: अच्छा
0: 62,
1: जी जी
0: 14 बरस।
1: जी
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई
1: बिल्कुल।
0: थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले, चलो उठो चलो चलते हैं। कहा चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं।
1: हाँ
0: तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
1: गजब।
0: 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैंने डैडी को लेके गया। बोले, इसको लड़के को आप बाबा जी क्या, राम प्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी
0: प्यारेलाल जी के पिताजी
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे
0: ट्रम्पेट
1: वो।
0: बजाया करते थे, और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने, जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है, और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है, हमने
1: जी कोई उनका
0: के
1: नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
0: बाबा जी बोलते ना। तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था,
1: जी
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था। और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूं,
1: बहुत सख्त थे वो,
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं।
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे, और मुझे राम सिंह कहते थे, मुझे
1: अच्छा
0: कहते ये मेरा राम सिंह है,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था। राम
1: हाँ
0: सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे, राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है।
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं,
1: नोटेशंस
0: नोटेशन लिख रहे हैं,
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी,
1: ये रफ्तार
0: ये रफ्तार थी। जैसे

0: टाइप कर रहे हैं,
1: टाइप करते ना जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो
0: जी।
1: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
0: वाह,
1: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
0: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
1: जो भी था
0: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
1: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणी।
0: हाँ, 63 में आ गई थी।
1: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था और प्यारे भाई वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
0: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
1: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ।
0: अरे वाह वाह,
1: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलती। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
0: अरे बाप रे, और आपकी इतनी कम उम्र।
1: इतनी कम उम्र, ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े।
0: जी जी, शेख मुख्तार।
1: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो।
0: वाह,
1: 6 फुट के थे,
0: 6 फुट हट्टे कट्टे,
1: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने। 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है
0: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है।
1: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: बाप,
1: 15-16 साल की उम्र।
0: कमाल।
1: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
0: जी।
1: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सर 3rd row में बैठा हुआ था, बजा रहा था। तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
0: वाह वाह,
1: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा अच्छा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
0: कौन सी फिल्म है
1: वो मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करती थी।
0: जी जी जी,
1: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
0: अच्छा।
1: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं होता था।
1: ऐसा नहीं होता था।
0: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
1: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
0: वाह वाह,
1: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
0: हाँ,
1: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
0: क्या बात है,
1: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे।
0: वाह,
1: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
0: गजब गजब, क्या बात है,
1: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
0: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो,
1: ये 64 की बात
0: जी। अब
1: फील ही फील है।
0: ये कहां से आया,
1: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
0: हा हा,
1: पहला सोलो था
0: जी।
1: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
0: जी,
1: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि आ गया है कोई,
0: एक वायलिनिस्ट
1: की
0: एंट्री हो गई।
1: Somebody's
0: जी
1: there.
0: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
1: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम
0: जी।
1: हम लोग सब यही कहते थे यार ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
0: करिश्माई काम है,
1: करिश्माई काम। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है, रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
0: हाँ।
1: जब प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
1: इस गाने को सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन्न सगला भाई बहना ने जगदीश भाई का रामरा भाई। देखो आपने जो खरीफ को फसल है धीरे धीरे पूरा हो रही है और बिरखा की जगह बात ही एक दो दिन थोड़ी बहुत आई और अब यूं आज का समाचार है कि जाऊँ तो मानसून दो चार दिन में निपट जाए, पर जगह खेती आप कर रखी है बीकी लुणाई तरीके करनी है और बातचीत करिए भाभी आप तो करा पुगती ग्वार मोट बाजरी जवार जकी भी फसल आप ली है मेहनत करी है बाने तरीके लेनी है जितो भी मिले बिने भी हिसाब और सागे सागे आगली श्यालू फसल की भी आप तैयारी करा हाँ जके माँ जट पीऊँ तो सुविधा है रो सके मावटो जावे तो कई फसलें एक दो अड़की बरसात भी हो जाए तो बीकी भी आप तैयारी बराबर रखा। पण आज करा अपनी बात पहली अपनी बात हर बार आप देखो नई बात करिया करा आज बात करा है कि यान की खेती की यान की फसल की जकी आप खेती की शाके शाके कर सका विशेष रूप में जट फूल ज्यादा खेती वे और आप समझ भी गया हो। देखो बात कर रही हूँ मैं मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन कराना देखो लकड़ी का विशेष रूप हूँ बक्सा मधुमक्खियां ने रखन खातर जट बे शहद मोम और दूसरा उत्पाद वैज्ञानिक तरीके में बनावे बी शुरू अपन ने तैयार कराना पड़े। इंगी प्रक्रिया चरण जे समझा

0: तो सब पहले तो देखो ठीक ढंग आप प्रशिक्षण लेवा, ज्ञान लेवा, और अनुभवी जगह आदमी है या जगह संस्था वहाँ है जगह पहले मधुमक्खी पालन करे, वहाँ आप मिला बातचीत करा, और ताकि सही तरीके में आप मधुमक्खी पालन को जो व्यवसाय है वो शुरू कर सकें। और बस बात करें आप स्थान से इनकी, भाई जगह किसी जगह यान गिनी से जट छाँव हुए, नमी हुए, आस पास पानी को स्रोत हुए, और किलोमीटरों लेर 500 मीटर तक भरपूर मात्रा में यान का पौधा हुआ जट फूल लड़ा हुआ, विशेष रूप में जान सरसों का है, तारा मेरो है, रायडो है, बरसीम है, यूकेलिप्स है, इन टाइप का जट पौधा हुआ खेती हुए, क्योंकि फूलांगे रसों परागू मधुमक्खी आपको जो को शहद बना हुआ। उपकरण और बक्सा की जब हम बात करें तो आधुनिक जो को लॉन्ग स्ट्रेट बक्सा है, फ्रेम है, रानी और उदक जाली है, या शहद निकालने वाला जगह यंत्र है, बाकी भी आप पूरी जानकारी जो कि जुटा ले। मधुमक्खी कॉलोनी की स्थापना न्यूक्लियस जो कि किया करे प्रमाणित जगह आपूर्ति करता है और स्वस्थ कॉलोनी आप खरीदा, रानू मधुमक्खी सागे सागे श्रमिक मधुमक्खियाँ और ड्रोन ए पूरा आपने लेना पड़े जना आप अपना धंधो जो शुरू है जो कर सका। बात उपकरण बक्सांगीर जे आप करी तो ये तो अपने देखना ही है खरीदना ही है, और देखभाल कृत्रिम फीडिंग बिंगू भी आप ध्यान रखा जे बराबर फूल वगैरह नहीं मिले तो प्राकृतिक रूप तो कृत्रिम रूप में मधुमक्खिया ने जीवित रखनी पड़े, तो भी सारू जान चीनी है, गुड़ है, बांगो घोल है, कृत्रिम फीडिंग जो को मधुमक्खी ने मिले तो बिंग भी पूर्ति रखा, और गर्मी सर्दी को भी आप जो को ध्यान रखा। शहद निकाला भी टाइम भी छत्ता फ्रेम शहद उभरीजिए जना भी टाइम मोम प्रत टारा पर क्या निकला बिंग भी आपने प्रशिक्षण लेना, और सागे सागे हनी एक्सट्रैक्टर मशीन आया करे शहद निकलेंगी बिंग भी आपने व्यवस्था करनी चाहिए। खर्चे की जो आप बात करा तो जबकि टाइम आप छोटे स्तर में तो धंधो शुरू करा या मधुमक्खी पालन को तो, और या बिना आप कमर्शियल या वाणिज्यिक रूप देना चाहवा व्यवसायिक रूप छोटे स्तर में 10 बक्सा इतना ही बहुत है, और 35-40 हज़ार इनकी आमदनी खर्चो लागे, और बुनियादी जो को शुरुआत है वह आप कर सका। मध्यम स्तर की जो आप मधुमक्खियों की खेती करना चाहवा तो 40-50 बक्सा की जरूरत है, 50 हज़ार लेर 10-1 लाख या 2-3 लाख तीन जरूरत पड़ सके, बड़ो व्यवसाय की स्तर आप जब बनावा तो भी के मायने 100 डिब्बा या बक्सा और 4 लाख लेर 5 लाख है जो को खर्चो की लागत आवे। इनकी जो आप घटक की बात करा तो मधुमक्खी की जो कॉलोनी है, बक्सा है, सुरक्षा उपकरण है, बामा तो भी छोटो मोटो खर्चा हुए बिंगो भी आप मैंने बराबर है जो को ध्यान रखना चाहिए। जे आप बात करा मधुमक्खियों की जो कि प्रजातियाँ हैं भाई किसी प्रजाति आप ले तो ज़्यादा ठीक रहे, तो इनके मायने बात करा विशेष रूप आप अपने स्तर माते जो अपनो स्थान है जिज्ञा है बिंगे हिसाब जो बात करा तो आपने अटागी व्यवस्था के हिसाब भारतीय स्तर के माते विशेष रूप मधुमक्खी की जो कि एपिस कैरिना इंडिका जो कि किस्म है वह ज़्यादा कारगर है, और छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरा जो कि न किया करे तो ये दोनों ही अपने देशी किस्म है, आप प्रजाति भी कह सकें, भारतीय स्तर माते स्वदेशी आप पाल सका। और रानी मधुमक्खी है बात सत्य के मायने रहे बिंकी भी सुरक्षा सब ज्यादा जरूरी है, और बिंग साग साग ड्रोन जो नर मधुमक्खी या करे बिंकी भी बाकी जगह श्रमिक और कामगार मधुमक्खियाँ हैं बे आपको जो को शहद है फूलंग रस है पराग है वो इकट्ठो करे और देखभाल करे, और शहद निर्माण के मायने बांगे मुख्य जो की भूमिका है बा रे करे। क्यों को मतलब वो यो कि धंधो यान को है ज्यादा जगह भी कौन नहीं करे, ज्यादा खर्चो भी कौन लागे, और इन टाइप की जो आप खेती कर रहा जगह जगह विशेष रूप जान सरसों गे रायडे गए तारा मेरे गए फूल वाली जगह खेती है तो भी के सागे एक नमी वाले मौसम में सर्दी वाले मौसम में वो भी एक व्यवसाय अपन ले सका, और आमदनी भी यूँ ज़्यादा हो जाए, और खर्चो एक बार लगाना बार बार लगाना है को नहीं। बातचीत तो और भी करा बन पहले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक।
1: जे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ, तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।
2: ओ,

0: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो भाई देखो आ तो बात करिए आप बदले मौसम के सागे, बदलते टाइम के सागे, खेती के साग सागे, एक और रोजगार के साधन की जो को आपने सुविधा के हिसाब अपनानो चाहिए और कारगर भी है। और मैं एक गांव गयो करी भाई बातचीत करा आपने पुख्ती। मैं देखो किसान भाइयों बात करने की मन में वेना गांव गांव गया करार यानी आज चलार नागोर आतुना निकले यार चालता चालता एक जगह रुकिया और भाई खेत में काम कर रहा है पहली करा अपने कार्यक्रम में स्वागत। राम राम सा।
5: राम राम सा। राम राम सा।
4: अपन जकी डाणिया में खड़िया किस गांव की कांकड़ा
5: गोदारे की डाणिया
4: और चारा का नहीं देखा तो देखो हाथरो धान लगुड़ो है रब के तो मालिक मेर है। खेती बाड़ी क्रिया करो।
5: खेती बाड़ी करा सा।
4: कहीं भाव
5: मोट बवा बाजरी बवा गवार बवा तिल भी बवा
4: मूंग
5: मूंग कम बवा हमारे थड़ी बेल्ट में थोड़ा कम हुआ मूंग थोड़ा धरती है।
4: तो जबकि अब के बरसात की बात करा तो देखो बरसात की तो कमी है को नहीं
5: बरसात बहुत ज्यादा हुई है अभी
4: और जगह लोग अगेती खेती करिए चाहे बाजरी है मूंग है मोट है गुआर है तिल है और ज्वार भी कई खेतों के मायने देखी मिली और पचेती बे भी अब के हांतरी है। तो जबकि अगेती खेती करी यानी बरसात होती है शुरुआत में कई जगह खेता में यूँ लागे कि बाजरी हिट्टा पा गया मूंग ही फली पा गई मोटा ही पा गई थार ज्ञान गई
5: मारा ठीक है सा मोट पा गया पाड़ना शुरू कर दिया।
4: मैं बात यूँ पूछूँ जान आप बाजरी की खेती करी है मूंग भी है मोटांगी भी है गंवार भी है तो बीज किसो कहीं काम लिया करो।
5: बीज देसी काम लेवा सा हाइब्रिड नहीं लेवा और खेत में देसी खाद ही डाला यूरिया बे उपयोग में नहीं लेवा।
4: कहने का मतलब पूरा जो को जैविक खेती की आप बात करें बीगो थे पालन करो।
5: हाँ सर
4: बात यूँ है कि देसी बीज कितों निपज बीघे में जान बाजरी की बात करें
5: बाजरी ढाई तीन कुंटल बीघे में निपज सा
4: और मूंग मोट
5: मूंग जो है ढाई तीन कुंटल और मोट भी चार कुंटल तक पहुँच जो है।
4: गंवार
5: गंवारी तीन साढ़े तीन चार कुंटल जमीन सारू है।
4: हाँ जान जमीन है भी हिसाब
5: भी हिसाब हूँ उजे हुए
4: तो दूसरी चीज आया जान आते हैं बीज की तो बात कर दी विदेशी बीज काम में लो और खाद विदेशी काम लो धन पशु कितना रखो
5: पशु हम साहब एक गाय है बेवड़ी है और भी लार बछड़ी है और दो बकरियाँ हैं।
4: तो जब जमीन की बात करें तो कितना बीघा आपके
5: जमीन मांगे पिताजी का नाम 45 बीघा है सर।
4: थारे कितनी
5: मारे 15 बीघा आएगी मैं तीन भाई हैं
4: तो 15 बीघा के मायने जान जगी ते खेती करो भी खेती के मायने एक गाय और बकरियां रीती देसी खाद हज जावे दूसरी गेम लाओ
5: नहीं हज जावे सर हर साल चेंज करा एक खेत में डाला अगले साल दूसरे खेत में
4: भी हिसाब
5: भी हिसाब हूँ तीसरे साल पांचों नंबर आ जाओ भी खेत में।
4: अपन सूर डाली की बात करा जानते हैं खेती शुरू करो भी पहली फालतू कचरो कितो हो गए खेत में
5: कचरो तो माने देसी हेट बोलिए करे अन्ना आम भाषा में बे ज्यादा होया करे थोड़ा बाने खोद निकाला और सीनियर ते आजकल कम हो गया शुरू ज्यादा कचरो पहले जीतु हुए कौन
4: बिंगे बाद में जान है आप खेती कर ले और खेती के बाद के माने जान निनाण माता जगह ना निराई गुड़ाई के वहाँ बी टाइम कितो कचरो बे सीनिया है आकड़ा है दूजो कोई बाब रोट कई खेता में आप देखा
5: नहीं देसी घास ही वैसा बाबरा ने मालता शुरू हुई कौन मारी थड़ी बैठ में
4: कई खेत के मायन में रस्ते के मायन देखियो जान प्यूंत की भी सुविधा है यानी कहीं ट्यूबवेल बने आपके
5: है नहीं आप पर प्यूंत कौन है सर
4: जगह ट्यूबवेल बनाई डी पानी क्या आन कहीं जमीन को
5: पानी ठीक ठाक है मूंगफली रियान की फसल धोए को नहीं राइडार देसी जीरा रि सबन ऐसी चीजा उजे हुए नरमा उजे हुए
4: जगह प्यूंत की खेती करे पीयूत की खेती के मायने बे तो जो कि जैविक आप खाद देसी खाद बोला आ काम में लगे दूजी भी लगे
5: बे ट्यूबवेल वाला तो ज्यादातर यूरिया और DAP
4: बे ले बे
5: आ ज्यादा
4: तो
5: काम
4: में कोई कहे कौन भी जैविक तरीको अपनाना है जैविक खाद आई काम में लेनी
5: बे तो बे किसाना की सोच थोड़ी गड़की है क्योंकि आ खाद एक बार डाले ना तीन साल तक असर दिया करे देसी खाद
4: बात तो साल में दो बार डालनी पड़े
5: बात तो साल
4: में फसल में डालनी पड़े
5: खड़ी फसल में दो बार डालनी पड़ जाए बात तो दो दिन कोई असर रिया करे भी
4: जान थे कहो कि मैं देसी बाजरी मूंग मोट गुआरा को देसी बीज काम में लेवा तो ओ जगी टाइम खेती पक जाए चाहे बाजरे की है मूंग की है मोट की है गुआर की है इनमें टाड़ो भी हो गए कि भाई बीज थोड़ो के हांतरो हिट्टो है या अच्छो गुआर है जगह फड़ी चौकी लागुड़ी है
5: टाड़ा सा इन मायने साठ या मोट है अलग टाड़ा चौकी फड़िया लागुड़ी हो जाएगी और सीटियां भी लंबी हुए तकड़ो बीज

0: जो है वे भी टाला और गंवार में भी फलियारा गुच्छा लागू है वे पौधा अलग टाला।
1: यूं बात यूं है कि जान आप चौको सुटो टाला और बाजरे के मायने तो देखो बिगे के मायने पाव लेर डेढ़ पाव तक ये तो बीज है।
0: हाँ सर।
1: और जे आप चौको बीज टाला तो थोड़ो थोड़ो टाला बीते हुए काम आ जाए। एक बात और पूछू यहाँ जे बीज टाड़ो और कोई भाई देसी बीज ही काम लेना चाहे तो कभी यहाँ टाल बढ़िया बीज बेची भी हो गए?
0: नहीं बेचू बीज को नहीं है, कोई मांग लियो अड़ोसी पड़ोसी तो बना दे दियो 5 किला 10 किला।
1: और जान यान बढ़िया वेर घरल जिमरल बाजरी राख लो और चौका हिटा टाल यान को जान आप हाइब्रिड बीज लावा थे लड़ो देसी पाची पनप जाए देसी खान पान में अच्छी हुए यान को टाल जान कुंटल खांड थे कर लो 2 कुंटल कर लो तो बाजरे को तो कई खेता में काम आ जाए। कदम यान सोचू को
0: यहाँ तो सोचो कौन
1: है देखो मजूरी के साधन भी है ना टाली उड़ू बीज हुए तो देखो एक तो अपन जान लगभग अभी बाजरे का भाव 2500 2000 2500 भी बीज के हिसाब में भाई देसी है कि हाइब्रिड है टाली उड़ू बीज हुए तो भाव बढ़िया मिल जी नहीं
0: भाव मिल जाओ पड़ोसिया ने मिल जाओ पड़ोस अनाज भी बढ़िया है वह तो सही है पड़ोसी की भी हेल्प हो जाए
1: कदम यहाँ सोची क्यों कौन भी थोड़ा होगी ध्यान रखना भाई आप सिट्टी तोड़ा ना बी टाइम चौका सिट्टा है पाकिड़ा सिट्टा है भाई आप अलग कर लो तो कुंटल 2 कुंटल बीज जो आप बना सका और बिने थोड़ा व्यवस्थित रखना भी सुड़े नहीं करे नहीं पाँचों पाँचों बीज जीते थे।
0: बात तो सही है बीज वाले टाइम तो सबरी समस्या है बढ़िया बीज मिले कौन जन लोग देसी मोल लाइट की बाजरी ना
1: लेकिन लुणा ही करे बी टाइम ध्यान दे को
0: ध्यान देवे कौन।
1: और कोई बात जाने थे विशेष जान गाय रखो गाय में भी अभी कोई हरी ठहरी रोग
0: नहीं सर आप तो 2 साल हो गई गाय में हाल फिलहाल कोई बीमारी नहीं आई बकरियां 2 है वे भी निरोगी है कोई बीमारी नहीं आई।
1: और अभी जान थे को के बाजरी में ग्वार में राल टाइम लाग लुनाई में यूं तीसवारी करे के
0: तीसवारी थोड़ा झोलो बह गयो
1: अभी जान एक दिन आतुण दिखना दवा चले भी पहले थोड़ी उतरा जो झोलो करे कर बात वो बाजू भी खेतम कितो फर्क पड़ो
0: खेतम 60% माइनस में गया
1: जगह फां प्रेमा धार डेरिया में जगत रह गया कई खेता में झांका तो देखो बाजरी पीली दिखे मूंग में मोटा में भी चलको लागूड़ो लागे
0: सब में लागे सब बाहर
1: लेकिन मूंग मोट में देखियो फली लगभग पाक भी फर्क पड़ी
0: फलियां पाक कई लोग पाड़ रही है यार कई चुंटे ही कर रही है बाद में फलियां भी लाग यार
1: तो मतलब कहने मतलब की नुकसान हुआ बाजरी में
0: नुकसान हुआ बाजरी में नुकसान हो गया सर
1: थोड़ थोड़ी है तो कहने की बात ही मोहन जी देखो भगवान बरसो गुणीर बन और देखो झोलाड़ीर वावड़ीर आप बात करा ना हो मेरे एक वाव तो लेनो था अपने हाथ को ना भाई जितो अपन देखे पान ने भी तो धाने हुए को
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इनके अलावा जान बात करा ए जगह ट्यूबवेल आर करे वो जमीन को पानी मेल की है अटे
0: वो तो ज्यादा मेल तो कौन ठीक ठाक है नॉर्मल फसल हो जाए मैं ज्यादा देसी जिरार ज्यादा एवरेज नहीं देवे
1: घणो देवो कोनी
0: घणो एवरेज देवे कोनी
1: कहने मतलब पचन करे लेकिन जति पचन करे बितो मिले कोनी
0: बितो मिले कोनी
1: बितो मिले
0: 5 लाख की 6 लाख की टुबे लंबेटे मारा पड़ोस में मैं देख ली बाकी 15-15 लाख तक बैठे थे किसान पड़ता खावे
1: नहीं पड़ता खे कौन
0: पड़ता कौन खावे सब मार पड़ो
1: लाइट को भी खर्च है पाइप पंप को
0: लाइट को बोई को बीज को दवाई को
1: खाद को
0: खर्चा बहुत है
1: खर्चा ज्यादा है उपज कम है या कई पड़पच करे है
0: पच किसान सही तकनीकी काम ले कौन
1: तो गाय राखो जो बात घर के देने खातिर
0: घर देने वास्ते
1: बेचो कौन
0: बेचा कौन
1: दूध बेचो कौन है आस पास कोई यान का है जान ज्यादा गाय राखे भैंसा राखे दूध बेचे
0: नहीं सर घरेलू गाय राखे एक एक दो दो गाय
1: बीती हमें
0: बेचने वाला और डेयरी वाला सिस्टम है कौन मारा
1: थोड़ा मतलब घर घर से खातर लाणो कोपड़े नहीं बोबट घर निकल जाए घर को कचरो जाए वो भी पशु काम आ जाए
0: पशु काम आ जाए
1: और खाद भी आ जाए
0: खाद भी आ जाए
1: स्कूल टाबरी सगला जावे बच्चा बच्चा
0: हाँ बच्चा दो लड़का है दोनों स्कूल जावे सरकारी स्कूल में पढ़े दोनों लड़का
1: अब आप बच्चे की बात करा भाई वो जो कोई इलाको है थोड़ा सो धोरा धरती माई सगला बच्चे ने स्कूल भेजे को भेजे
0: हाँ पहले तो कौन भेजता सा अब सब बच्चिया ने पढ़ा हुआ है मतलब सब माई तेज जगह लड़कियां ने पढ़ा हुआ है और पढ़ाना चाहेगा लड़की कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ ले तो आप शिक्षित हो जाओ
1: तो चलो अच्छी बात मोहन जी अभी जब पानी की पीऊँ की तरह तो नेहरा हो बैठ
0: पानी नहीं है सर
1: आओ को ना है ना लाइन डाली
0: लाइन आया खाली पीऊन पानी आम जन पीऊन वास्ते
1: मतलब सिंचाई
0: सिंचाई के लिए नहीं
1: पीऊना वो पूरा हो गया

0: अभी शुरू नहीं हुआ क्या, दीपावली तक शुरू कर देंगे।
1: एक बात और जान, इतनी बरसात हुई मैंने तालाब कम दिखे।
0: एक नाडी जगह में 6 महीना पानी रहता हो पहली, अब हर साल भी नरेगा चाल जाए की ऊपर पापड़ी चमुड़ी है, हर साल कुचर ले
1: होश
0: तो पानी
1: जल्दी होश
0: होश जाओ। एक महीने कौन साल ले
1: बंदाई करोड़ी कौन कही
0: बंदाई कौन करोड़ी
1: बंदाई हुए तो रोक सके। टांका वांका बनाए लोग
0: टांका बनाए सब मिट्टो बरसात वालों पानी
1: कितना कितना बढ़ा
0: है टांका 8 टैंकर का 10 टैंकर का
1: भी में भी सरकार अनुदान दे रहे बोलियो को लियो कोई
0: नहीं माँ तो कौन लियो सा
1: मिले तो सब नहीं है बस 1 लाख रुपये लेना बिंग मायने चलो जमीन कटानी पड़े सार्वजनिक टाइप बनाना
0: जमीन पहली बात तो मान लो कटाना चाहे कौन है रस्तो लागू जरूरी है
1: रस्तो वे ना
0: बाबी है कौन कटान होना जरूरी है इतनी प्रक्रिया आम जन करे कौन
1: भी
0: सोचे कि जमीन कटा टांको बनवा कोई भी पानी पी सके अगर लोग ले कौन सरकारी शायद
1: लेकिन पानी की सुविधा तो बन जाए अगर करे तो
0: सुविधा बन जाए लोग आप पैसों में बनाई है टांका 8-8, 10-10 टैंकर का।
1: चलो मोहन जी इतिहास की बात करी। राम राम सर।
0: राम राम सर। राम राम सर।
2: तो मैं देख गोदना के डाणे मोहन राम जी जगह करीब बातचीत और करीब आप तीन पुगतीर वक्त है देखो अभी जगी आप करीब की फसल हुई मांगी लुणाई को लगे टगे पक्यूड़ी है कई जगह लोग मूंग की खेती अब ले ली मोट गंवर भी पकान माते है और बाजरे की सीटियाँ भी कई जगह टूट गई कई जगह टूट रही है तो इनको भी अपन रखना है ध्यान और सागे सागे ध्यान और रखना है कि आपने उड़ी के कोई लोकगीत और भजन रही तो प्रकाश माली रो बाबा रामदेव को ओ लोक भजन कराता है पोक तो लो सुना।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: तो भाई देखो बाबा रामदेव को प्रकाश माड़ो गाड़ो लोग भजन करियो आप तीन पूग तो, और चालता चालता जकी फसलां बोईडी है या आगे लेवा या जकी अपने बागवान आली फसलां है बा में जका मुख्य पोषक तत्व तो है। प्राथमिक पोषक तत्व तो में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम विशेष रूप में ध्यान रखा। नाइट्रोजन की कमी पौधा की जगह वृद्धि है, क्लोरोफिल है, निर्माण है वो कम हो जाए। फास्फोरस की जो कमी हुए तो फूल आऊ में फल पकड़ के मायने कमी हुए। इस प्रकार की पोटेशियम की जो कमी है तो प्रतिरोधक क्षमता है या पानी को जो संतुलन है वो कम हो जाएगा। तो इनको भी अपन ध्यान रखना है। इनके साथ संरचनात्मक जगह पोषक तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आंगी भी बराबर पूर्ति है जो कि अपन ने रखनी है। और जो द्वितीयक गुण पोषक तत्व की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर गंधक भी जगह ने कहया करे। यूं भी ए पौधा की जगह कोशिकाओं है बने मजबूत करे, क्लोरोफिल जो को जरूरत है जितनी भी हिसाब में बनावे। सूक्ष्म जगह पोषक तत्व है लोह है, जिंक है, जस्तो है, कॉपर है, तांबो है, मैंगनीज है, बोरोन है, निकेल है, क्लोरीन, अंगों भी अपने बराबर ध्यान रखना है। विशेष रूप में

और आंकड़ों है किसे पोषक तत्व की कमी है, बिंको ध्यान पड़े आप टाइम टाइम माते पानी और मिट्टी की जांच कराता रहे। और पानी और मिट्टी की जो आप बराबर जांच करावा तो आपने पता लाग जी कि आपने जो जमीन है पानी है बिंग मायने किसे पोषक तत्वों की कमी है, बगैर मतलब जो आप खर्चो करा तो वो भी है कोने काम को, क्योंकि जके पोषक तत्व की कमी है बिंगी पूर्ति करा तो ज़्यादा ठीक रहे। और कई बार कहीं करा आप बगैर जानकारी के कोई पोषक तत्व दे देवा जगह की जरूरत है कोनी तो बिंगो भी विपरीत असर है, उल्टो असर है वो आपने खड़ी फसलों में थे या हो सके जगह आप बागवानी खेती करिए भी मत पड़े। तो ये जगह पोषक तत्व है जगह ने सूक्ष्म पोषक तत्व कहा करा आगो भी ध्यान रखना है। और आगे भी कैटेगरी अलग अलग है, प्राथमिक जगह मुख्य पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व है, बिंग बाद में सूक्ष्म जगह पोषक तत्व है। तो प्रत्येक इंग एक चीज और या करे संरचनात्मक पोषक तत्व, तो आ सब गो मिलार जे आप ध्यान रखा तो जकी मेहनत आप कर रहे हैं किश्त आप कर रहे हैं बी को आपने पूरा फायदा मिले। और घड़ी का नहीं जमा तो खेती बाड़ी का जगह तेवड़ीड़ो वक्त हो रही हो पूरा तो आपके जगदीश भाई नंद्रावशी करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होती है युवाओं के सपनों की, उनके जुनून की और उन हौसलों की जो मुश्किलों के सामने भी हार मानना नहीं जानते। मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त नेहा नारायण सोनी और आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, कुछ दिल छू लेने वाली बातें और एक ऐसा संदेश जो शायद आपके आज को थोड़ा बेहतर बना दे। दोस्तों, जिंदगी में रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। कभी मंजिल दूर लगती है, कभी मेहनत का नतीजा तुरंत नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, धीमी रफ्तार का मतलब हार नहीं होता, बस चलते रहिए, क्योंकि हर छोटा कदम आपको आपकी बड़ी मंजिल के करीब ले जा रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे सार्थक जीवन शैली के बारे में। तो सार्थक जीवन शैली का अर्थ केवल सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें संतुलन, उद्देश्य, अनुशासन और संतोष हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सफलता और सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए सार्थक जीवन के लिए अपने समय और प्राथमिकताओं को सही दिशा देना आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली इसकी पहली सीढ़ी होती है। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही हमें अपने परिवार और मित्रों के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी अच्छे रिश्तों से ही मिलती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये

0: रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सार्थक जीवन शैली का अर्थ केवल सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें संतुलन, उद्देश्य, अनुशासन और संतोष हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सफलता और सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए सार्थक जीवन के लिए अपने समय और प्राथमिकताओं को सही दिशा देना आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली इसकी पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सार्थक सोच हमें हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसके साथ ही हमें अपने परिवार और मित्रों के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी अच्छे रिश्तों से मिलती है। सार्थक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने लक्ष्य को पहचानना और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना भी है। असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। दूसरों की मदद करना, प्रकृति का सम्मान करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना जीवन को और अधिक मीनिंगफुल बनाता है। साथियों, अंततः सार्थक जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियों का कारण बने। कम में संतोष, सही दिशा में प्रयास और हर दिन कुछ अच्छा करने की भावना, यही सार्थक जीवन शैली की पहचान है। दोस्तों, बात करते हैं सामुदायिक सेवा और एनसीसी के महत्व के बारे में। तो एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारत का एक युवा संगठन है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। एनसीसी युवाओं को केवल शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं देता, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको और दूंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे सामुदायिक सेवा और NCC के महत्व के बारे में। तो NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स भारत का एक युवा संगठन है। NCC युवाओं को केवल शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं देता, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। NCC की गतिविधियों में सामुदायिक सेवा का विशेष महत्व है। सामुदायिक सेवा का अर्थ है समाज और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए स्वेच्छा से कार्य करना। NCC कैडेट स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान, जागरूकता, स्वास्थ्य एवं जन जागरूकता अभियानों तथा आपदा के समय सहायता जैसी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं में समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। उन्हें ये समझ आता है कि एक बेहतर समाज बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। NCC युवाओं को एकता और अनुशासन की भावना से जोड़ता है। यह नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए सहायक है। NCC में सीखी गई ये बातें विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उनके भविष्य के करियर में भी उपयोगी होती है। इस प्रकार NCC और सामुदायिक सेवा मिलकर युवाओं को अनुशासित, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और बात करेंगे त्वचा और स्वास्थ्य की देखभाल के कुछ आसान प्राकृतिक उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: दोस्तों, अब बात करते हैं त्वचा और स्वास्थ्य की देखभाल के कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में। तो सबसे पहला है कि पर्याप्त पानी पिए। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। अगला है मौसमी फल और सब्जियां खाएं, जैसे आंवला, संतरा, अमरूद जैसे फल तथा हरी सब्जियां विटामिन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करती है। संतुलित आहार त्वचा और पूरे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है नींद को दें प्राथमिकता। रोज पर्याप्त और नियमित नींद लेने से शरीर को आराम और रिकवरी का समय मिलता है। देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत को कम करने की कोशिश करें। अगला है त्वचा को साफ रखें। बाहर से आने के बाद चेहरे को हल्के तरीके से साफ करें। बहुत ज़्यादा साबुन, स्क्रब या बार बार चेहरे धोने से त्वचा में जलन हो सकती है। अगला है धूप से बचाव करें। तेज धूप में बाहर निकलते समय छाता, टोपी या पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। जरूरत के अनुसार सनस्क्रीन भी लगाया जा सकता है। अगला है घरे

नुस्खों में सावधानी रखें। एलोवेरा जैसी चीजें कुछ लोगों की त्वचा को आराम दे सकती है, लेकिन नींबू, बेकिंग सोडा या तेज चीज़ों को सीधे चेहरे पर लगाना नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी नए उत्पाद या नुस्खे को पहले छोटे हिस्से पर आजमाएं। अगला है, तनाव कम करने और सक्रिय रहें। योग, प्राणायाम, टहलना या अपनी पसंद की शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करें। स्वस्थ शरीर, पर्याप्त आराम और मानसिक संतुलन का असर आपकी समग्र सेहत पर पड़ता है। यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये शानदार गीत।

दोस्तों, इसी गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी, आपकी होस्ट और दोस्त, लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बालवाड़ी।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपनी मंजू दीदी का जय हिंद। बच्चों, आज है रविवार और रविवार का दिन जो यूँ कहें कि हमारी स्कूल की होती है छुट्टी, है ना। और अब की बार तो बच्चों मज़ा ही आ गया छुट्टी, है ना। काफ़ी छुट्टियां हो गई इस सप्ताह में, हो गई ना। बहुत खेल कूद, मौज मस्ती, खूब आराम से हम लोगों ने एंजॉय किया इन छुट्टियों को, है ना भाई। हमने तो किया, आपने भी किया, बिल्कुल किया होगा। कहीं घूमना फिरना, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं, स्कूल जाने का टेंशन नहीं, है ना बच्चों। और किताब पढ़ने का भी कोई टेंशन नहीं, है ना। लेकिन बच्चों, बात हम शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, भाई टेंशन तो नहीं है किताबों का, लेकिन कभी दोस्तों के जाना, इधर जाना उधर जाना, लेकिन आपको पता है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन होता है? पता है आपको? चलो बताइए आप, कौन कौन होता है आपका सच्चा दोस्त? चलो मैं बताती हूँ आपको, सच्चा दोस्त आपका कौन होता है। किताबें जो होती है ना, वो हमारा सच्चा दोस्त होती है, हमारा पक्का दोस्त होती है, हमारी मित्र होती है किताबें, है ना। ये तो बात सही है बच्चों कि ये हमारा सच्चा साथी होती है, क्योंकि किताबें हमारा मार्गदर्शन भी करती है और हमें ज्ञान भी देती है और बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाती है, है ना बच्चों। हमारे जीवन में किताबों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि मित्रों का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में, है ना भाई। हम खेलेंगे कूदेंगे, जो भी मौज मस्ती करेंगे।

स्कूल जाएंगे तो हमारे मित्र होते हैं ना, उसी तरह से मित्र तो बच्चों फिर भी बदल जाते हैं, कभी कभी स्वार्थी निकल जाते हैं मित्र, है ना, जहाँ अपना फायदा होता है उधर वो मित्र चला जाता है ना। लेकिन किताबें जो है वो कभी नहीं बदलती है बच्चों, और इनको ये निस्वार्थ भाव से हमारा साथ देती है, और पल पल यूँ कहेंगे कि हमने अगर कोई एक कहानी पढ़ी, या यूँ कहें कि हमने कोई एक प्रेरणादायक जो है कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ी, तो हमें वो कुछ न कुछ तो सिखाती ही है ना। तो हमें चाहिए बच्चों कि हम किताबों का साथ कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि ये हमें सही रास्ता दिखाती है। किताबें जो है ज्ञान का महासागर होती है, इसमें सदियों का अनुभव, वैज्ञानिकों की खोजें, महापुरुषों के विचार और इतिहास की घटनाएं, इसमें बहुत सारी बातें सिमटी होती है। और सबसे बड़ी बात देखिए बच्चों, ज्ञान लेने के लिए हमें कहते हैं ना भाई, जितना आप बाहर निकलोगे उतना आपको ज्ञान होगा, जितना लोगों से मिलोगे उतना आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगी दुनियादारी की। लेकिन बच्चों मैं तो कहूँगी कि घर बैठे ही किताब आपको दुनिया भर का ज्ञान आपको प्रदान कर देगी। अच्छी से अच्छी किताब पढ़िए आप, है ना, घर बैठे हमें ज्ञान मिल जाएगा और हमें सही रास्ता भी मिल जाएगा और सही जानकारी मिलेगी, है ना बच्चों। और हमारे बौद्धिक विकास के लिए किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। खेलने कूदने से हमारा शारीरिक विकास हो जाएगा, लेकिन हमारे मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए, कुछ चिंतन मनन के लिए किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि ये किताबें हमें जो यूँ कहें कि हमारे मस्तिष्क का विकास हो सके। उनसे कहते हैं भाई क्यों क्या कैसे, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है हमारी, तो इनको शांत करने का काम किताबें ही कर सकती है ना। इसके अलावा देखिए बच्चों, भाई मैं कहूँगी कि अगर आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं या आपका कोई दोस्त नहीं है ना, तो भाई यही करिए ना, आप किताब को अपना अच्छा सा दोस्त बना लीजिए। वो आपका अकेलापन भी दूर करेगी, तनाव भी दूर करेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है, हमारे चरित्र का निर्माण करने में किताबें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन में ईमानदारी, साहसी, परोपकारी, एक दूसरे की मदद करना, ये सारे गुणों का समावेश किताबों में होता है और वो हमें सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, सही और गलत का अंतर भी किताबें ही सिखाती है बच्चों। हाँ, भले ही आज का युग जो है डिजिटल हो गया है, लेकिन किताबों का महत्व इसमें कम नहीं हुआ है। यदि हम जीवन में बच्चों शांति चाहते हैं, तो किताबों से दोस्ती हमें कर लेनी चाहिए, है ना। और इसके साथ भाई मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि किताबें पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किस तरह की किताबें। एक आता है ना मन में विचार, कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है या कहानियों की किताब पढ़ना अच्छा लगता है ना। मैं तो भाई, मुझे तो कॉमिक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, कहानी की किताब भी पढ़ना अच्छा लगता है। कॉमिक्स के अंदर बच्चों चित्रों सहित, है ना, वो जो कहानी होती है उसमें चित्र भी बने होते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये कहानी क्या सिखा रही है ना। जैसे देखिए ना बच्चों, चाचा चौधरी की कॉमिक्स, है ना, ये कितनी अच्छी लगती है पढ़ने में। और ये इसके जो पात्र है ना, वो कंप्यूटर से भी तेज दिमाग की ये कॉमिक्स होती है ना। और पंचतंत्र जो कहानियों की किताब है, अमर चित्र, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाती है ये कहानियाँ। और इसके अलावा बीरबल वाली सभी कॉमिक्स भी बहुत कुछ सिखाती है। पंचतंत्र की कथाओं में बच्चों पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, और अमर चित्र कथा से पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का, चित्रों को जानने का अवसर प्रदान करती है किताबें, है ना। तो बच्चों किताबों के लिए हमने बहुत ढेर सारी जानकारी जो है एक दूसरे के साथ शेयर की, तो बस मैं कहूँगी किताबों से दोस्ती आप कर लीजिए, है ना। वो आपको सही राह भी दिखाएगी और तनाव से भी दूर रखेगी। और कभी कभी दोस्त से झगड़ा हो जाता ना, अपना होता है ना भाई, मेरा तो हो जाता है कभी कभार अपने दोस्तों से, तो आपका भी अगर दोस्तों से कभी कभार झगड़ा हो जाए, तो अच्छी सी कहानी की किताब आप लेके बैठ जाइए या कॉमिक्स लेके बैठ जाइए आप। कुछ देर बाद देखिए आपका मन भी शांत होगा और आपको तसल्ली सी महसूस होगी, है ना। और जब बारी आती है बच्चों किताबों की बात करते हैं, सामान्य सी हमारे पाठ्यक्रम की किताबें, है ना, तो भाई उनसे तो दोस्ती करनी ही है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है ना, परीक्षाओं का टाइम, जब दोस्ती के साथ साथ हमें चाहिए कि उन्हें रटना भी पड़ता है हमें, क्योंकि हमें पास होना है और अच्छे मार्क्स भी लाने, है ना, रटना पड़ता है ना,
बिल्कुल सही है बच्चों।

इसके साथ ही बच्चों आते हैं हम हमारी चर्चा पर और बात करते हैं पानी की। भाई पानी की बचत कैसे करें, क्योंकि पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है बच्चों। जल हमारे जीवन, प्रकृति और पृथ्वी के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है ना। मानव शरीर का जो 60 से लेकर 70% हिस्सा जो है पानी से बना होता है। पानी हमारी पाचन क्रिया और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कहते हैं कि खाने के बिना कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाते। पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है, जैसे पीने में, खाना बनाने में, स्नान करने में, साफ सफाई करने में, और रोज की बुनियादी जरूरत जो है ना वो पानी ही है। और इसके बिना खेती और फसलों के लिए, फसल का जो पैदावार है वो भी नहीं हो पाती। खेती के लिए और फसलों के लिए भी पानी का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बिना उत्पादन संभव नहीं है बच्चों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से भी जो है ये जीवन प्रदान करता है पौधों को पानी, और वातावरण को हरा भरा रखना और इस पानी का काम होता है। जब

प्रकृति को पानी समय पे नहीं मिलेगा, या यूं कहेंगे कि पानी मिलेगा ही नहीं तो प्रकृति हरी भरी नहीं हो पाएगी, है ना बच्चों। हम कहते हैं ना, जहाँ बरसात कम होती है वहाँ पे जो हरा भरा जो वातावरण है वो नहीं हो पाता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे इधर की, तो इधर बरसात थोड़ी कम होती है, लेकिन जब दक्षिण राजस्थान की बात करते हैं तो प्रकृति को खूब अच्छा पानी मिलता है, वहाँ बहुत हरियाली होती है बच्चों। तो बस यही कह सकते हैं कि फसलों के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए और भी पेड़ पौधों के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें चाहिए हम पानी की बचत करें, है ना भाई। हमारे यहाँ के एरिए की बात करते हैं तो यहाँ के लिए तो पानी की बचत करना, यूँ कहें या पानी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बरसात बहुत कम मात्रा में होती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप जैसे मंजन कर रहे हैं, उठते ही हम लोग मंजन करते हैं बच्चों, है ना, स्नान करते हैं या और भी जो भी काम है वो करते हैं, तो हमें चाहिए कि नल बंद करके फिर ये काम करें। ऐसा नहीं हम लोग जो है पानी चल रहा है, नल चल रहा है और ना लिए, नहीं, पहले आप बाल्टी भर लीजिए उसके बाद आप नहाइए। या पेस्ट कर रहे हैं आप लोग, दातुन कर रहे हैं, तो आप पहले नल को बंद रखिए, दातुन कर लीजिए, उसके बाद में आप नल को खोल के उसको काम में लीजिए, है ना। और वॉशिंग मशीन का पूरा इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें पानी थोड़ा कम लगता है, है ना। और इसके अलावा बात करते हैं हम, अगर कहीं घर में नल लीकेज हो रहा है तो ऐसा नहीं कि लापरवाही कर ले हम लोग, नहीं, जब तक मिस्त्री आप लीकेज का पता चलते ही आप मिस्त्री को बुलाइए, नल ठीक करवाइए। अगर मिस्त्री को कुछ समय के लिए देरी हो रही है तो नल के नीचे आप बाल्टी रखिएगा और उस पानी को इकट्ठा करिएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात आती है बच्चों कि बरसात के दिनों में आप उस पानी को खोद में या आप टांके में या कुएं में जो भी व्यवस्था है उसको आप इकट्ठा करिए, उसका पानी का संरक्षण कीजिए ताकि साल भर वो पानी काम में आ सके। और उसके अलावा जो दैनिक उपयोग में बात करते हैं हम लोग, बचे हुए पानी को दोबारा उपयोग में ले सकते हैं हम, जैसे हम सब्जी धोते हैं, फ्रूट धोते हैं, उसके लिए या खाना बनाने के टाइम जो पानी काम आता है उसमें से कुछ पानी बच जाता है, उनको ऐसे ही नाली में नहीं फेंकना है। किचन गार्डन में हम लोग काम में ले सकते हैं, या आसपास कोई पेड़ पौधे हैं तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि गाड़ी धोने में भी पाइप से गाड़ी धोते हैं तो वो पानी सड़कों पर यूं ही बहता रहता है। इससे बढ़िया हमें ये करना चाहिए कि बाल्टी भर के बाल्टी से गाड़ी को धो लेनी चाहिए, है ना, तो पानी भी कम लगेगा, पानी उपयोग में कम आएगा और गाड़ी भी धुल जाएगी बच्चों। और इसके अलावा भूजल स्तर में काफ़ी गिरावट आ रही है दिन पर दिन। दुनिया भर में कई ऐसी महिलाएं जो पानी इकट्ठा करने में करोड़ों घंटे खर्च करती है, काफ़ी समय बर्बाद करती है, जब जाके एक मटका पानी दूर दूर से पानी लेके आती है, है ना। हमें पानी के महत्व को समझते हुए बच्चों पानी की बचत करनी चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए पानी का। अब खेतों की बात करते हैं ना, तो स्मार्ट सिंचाई प्रणाली लागू हो चालू है, है ना, तो हमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई कर देनी चाहिए, उसमें पानी भी कम लगता है। इसके अलावा ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, यानी काम में लिया हुआ पानी दोबारा काम में ले सकते हैं, कम पानी की खपत वाले जो भी साधन हैं वो, और वर्षा जल संचयन, इस तरह से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, या यूँ कहें कि पानी की बचत कर सकते हैं, है ना बच्चों। और पानी नहीं तो जीवन नहीं, है ना, और पानी एक ऐसा है जो जिसमें जिसको मिलाए वो वैसा ही बन जाता है ना। तो इस तरह से बच्चों सुनिए आप ये गीत।

बच्चों, इसके साथ ही मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। सुनेंगे ना? बिल्कुल, मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ इसकी, खरगोश और कछुए की, है ना। एक बार क्या होता है बच्चों, खरगोश

खरगोश आराम करने बैठा तो उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे धीरे धीरे धीमी रफ्तार से चलता रहा है ना, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका। उधर जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा और दौड़ना शुरू किया, देखा तो कछुआ वहाँ पे पहुंच चुका है ना। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कैसे भी हैं, धीमे हैं, तेज है या जो भी है, अगर हम सब कुछ ओके हैं तो भी गर्व नहीं करना चाहिए, और अगर धीमी रफ्तार है हमारी तो भी हमें रुकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे धीरे धीरे लगातार लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो मंजिल एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी। अच्छी थी ना कहानी बच्चों, बहुत प्यारी सी कहानी थी ये। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आज स्वामी विवेकानंद के बारे में, है ना। इस कार्यक्रम में बालवाड़ी में हमारा एक स्तंभ होता है प्रमुख व्यक्तित्व का, तो उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्वामी जी विवेकानंद जी के बारे में। बच्चों इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इन्होंने बचपन से ही धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव रहा इनका। 18 वर्ष की आयु में वे रामकृष्ण से मिले और उनके समर्पित शिष्य बन गए, और बाद में वे सन्यासी के व्रत ग्रहण कर लिए उन्होंने। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक घुमंतू भिक्षु के रूप में व्यापक यात्रा की, और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के अधीन भारतीय जनता द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, यानी उनको देखा कठिनाई झेलते हुए, वे उनकी पीड़ा को कम करने का मार्ग सोचा और आखिर में उन्होंने मार्ग खोज निकाला। लेकिन उनके पास पूंजी की कमी थी। 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे हमारे भारत की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वहाँ उन्होंने इस तरह का भाषण दिया कि वहाँ के जो लोग हैं ना, सभी को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से संबोधित किया। ये बात वहाँ के लोगों को छू गई और पूरे संसार में विवेकानंद जी की और भारत की जो तारीफ हुई ना, उनको शब्दों में कह नहीं सकते बच्चों। वहाँ भी उन्होंने हिंदू आध्यात्मिकता का परिचय दिया और उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक भारतीय विचारकों में से एक महानतम विचारक का दर्जा भी मिला। ये एक दार्शनिक, समाज सुधारक, वे विदेशों में वेदांत दर्शन के सफल प्रचारक रहे। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थान की आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक देशभक्त संत के रूप में मनाए जाने वाले उनकी जयंती भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भी मनाई जाती है, और शास्त्रीय योग और अद्वैतवाद का संश्लेषण इन्होंने करके योग की स्थापना भी इन्होंने की। बच्चों इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से प्रयत्न किए, तो उनके बताए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, और उनकी जो युवा शक्ति को जो उन्होंने प्रेरणा दी ना, वो यूँ कहें कि अविस्मरणीय है ना बच्चों। और देखो बच्चों, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भाई अब छुट्टियाँ तो हो चुकी है, 4-5 दिन की छुट्टी जो थी अभी इस सप्ताह में, उसके बाद स्कूल भी खुलने वाली है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान, हम कहते हैं ना, अभी जो बात करी ना कछुए वाली और खरगोश वाली, मैं तो यही कहूँगी कि आप भी अगर किसी विषय में कमज़ोर हैं, तो हम जब अक्सर जो हम लोग विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में कमज़ोर होते, तो हमें चाहिए कि हमारा जो है अभ्यास वो निरंतर चलता रहे, धीरे धीरे धीरे करके चलता रहे। पढ़ने की अवधि भी आप जो है थोड़ी सी बढ़ाएं, और अपने दोस्त की मदद से भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बस उस कहानी से शिक्षा लेते हुए बच्चों, जो धीरे धीरे लगन रखते हुए आगे बढ़ते रहे, है ना, अपने आप समस्याओं का समाधान हो जाएगा और एक दिन मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। बच्चों ये हुई बातचीत, और बातचीत के साथ ही जब घड़ी की तरफ देखते हैं तो घड़ी टिक टिक टिक टिक आगे की ओर बढ़ रही है ना, और हमें हमारे समय सीमा जो है, समय सीमा में हम बंधे हुए हैं, समय हमें बता रही है, तो क्यों ना बच्चों हम समय का महत्व समझते हुए हमारे इस बालवाड़ी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और करते हैं बच्चों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी कार्यक्रम एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह

0: सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में मन फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा गीतकार समीर ने। अगला गीत सुनिए नदीम श्रवण की तर्ज पर अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साजन।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साजन फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए माटी के स्वर।

कान्या मान्या कुर चाला जोधपुर भाई कान्या रे मान्या कुर चाला जोधपुर हे रे जोधपुर का कबूतर अरे भाई उड़ता रे फुर फुर रे मोटर बोली भाई मोटर बोली बुर छोरा बोलिया हुर मोटर बोली बुर छोरा बोलिया हुर फिर लागे रे गिंडक।

नानी बायर आयो जरक बिल्ली घुर्रावे जरख्या का कान सुन। जोधपुर का

0: कान्यो मांगे एज कान्यो मांगे चूरियो बाती नानी गाली दाल पर नानी जी ने दिखो तो नी दाल में पड़ गो बाल भाई नानी बोली अर छोड़ दाल कर पर ये मारा लाल ने कान कुवर ने भाई कान कुवर ने दूध पिला जू गर मर गर।
1: अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर FM बैंड 103.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: बड़ी बहू
3: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
3: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए समन्वित रूप से ठोस कदम उठाना जरूरी। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में कल अध्यक्ष का चुनाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में 25 सितंबर को महापौर चुने जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मेलों को लेकर दशमी तिथि पर धार्मिक उल्लास, मंदिरों में आज जागरण। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, शूटिंग में 2 रजत पदक हासिल हुए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के समय में आई कई प्राकृतिक आपदाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु के असर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहा है कि जलवायु से जुड़ा जोखिम बहुत गंभीर हो गया है। उन्होंने इस समस्या को रोकने और इससे निपटने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी संबंधित पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: गौरतलब है कि सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की ओर से रखा गया था। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में कल अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के कुछ वार्डों में पुनर्मतदान के चलते वहां 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। कल उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली

0: और अजमेर नगर निगमों में महापौर पद के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि भीलवाड़ा और भरतपुर में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इन दोनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए हैं। कल के चुनाव में परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के बीच ही माना जा रहा है, हालांकि कई जगह निर्दलीयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। उदयपुर नगर निगम में भाजपा का महापौर बनना तय है, वहां पार्टी ने पारस सिंघवी को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह अलवर में भी भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और यहां निर्दलीयों के सहयोग से पार्टी का बोर्ड बनता दिख रहा है। पाली और अजमेर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी पार्षदों के समर्थन के लिए उसे निर्दलीयों का सहयोग लेना होगा। बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां पार्टी के अनिल कल्ला का मेयर बनना संभव है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब के फाजिल्का जिले से किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अभियान देश की भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जो समाज सुधार से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: इस बीच देशव्यापी अभियान के तहत आज नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। कई जगह युवाओं को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रमों में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर इन दिनों भारत और जापान की सेनाओं के बीच वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 संचालित किया जा रहा है। वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। अभ्यास में भारतीय वायुसेना, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, SU-30 MKI और राफेल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। वहीं जापान की वायुसेना AF-2A लड़ाकू विमान के साथ हिस्सा ले रही है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एयरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भाद्र माह की दशमी तिथि पर कल लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मंदिरों और ढूणों पर धार्मिक उल्लास का माहौल रहेगा। जैसलमेर स्थित रामदेवरा में चल रहा सालाना मेला परवान पर है। कल अंतिम दिन महाआरती के साथ मेले का समापन होगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि 9 दिवसीय मेले में राजस्थान और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के जयकारे के साथ शामिल हो रहे हैं।
2: रामदेवरा में चल रहे लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगी पताका और घोड़े लेकर देश के विभिन्न कोनों से आए भक्त उत्साह एवं उमंग के साथ बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु अपने साथ बड़ी बड़ी ध्वजाएं और घोड़े लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के चाक चौकर प्रबंध किए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: धर्म और गौ रक्षक तेजाजी महाराज की दशमी पर भी प्रदेश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। तेजाजी की जन्मस्थली नागौर जिले के खरनाल में वार्षिक मेले में आज पहले दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के साथ जात लगाने पहुंच रहे हैं।

0: किला दो दिन भरेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रात्रि जागरण में कलाकार तेजा गायन व भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। मुख्य मेला सोमवार को आयोजित होगा जिसमें जिले के साथ अन्य जिलों एवं प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पैदल और वाहनों से खरनाल पहुंचेंगे। सोमवार शाम को खरनाल से नागौर तक साइकिल दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस, आरएसी, होमगार्ड और गश्ती दल तैनात रहेंगे। सीसीटीवी व ड्रोन से भी निगरानी होगी। इसके साथ मेले के दौरान सुबह 6 से रात 8 बजे तक NH-62 पर खरनाल जोधपुर रोड का यातायात टांगला फांटा से रिंग रोड होते हुए बाईपास की ओर डाइवर्ट रहेगा। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज की दशमी पर शुभकामनाएं दी हैं। रिको ने प्रदेश में अविकसित और अर्धविकसित भूखंडों के लीज नवीनीकरण नियमों में आंशिक संशोधन किया है। रिको की भूखंडों के आवंटन संबंधी नीति में शुरुआती 33 साल की लीज अवधि के आगे 33-33 वर्षों की दो अवधियों तक नवीनीकरण का प्रावधान है। नए प्रावधान से लीज नवीनीकरण पर देय प्रीमियम की व्यवस्था अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी। साथ ही संबंधित भूमि के दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक सुनिश्चित नियामकीय ढांचा भी उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि रिको द्वारा जयपुर, भिवाड़ी, दौसा, कोटा, बीकानेर, राजसमंद और उदयपुर में भूखंडों का ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए 25 सितंबर तक EMD जमा करवाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने शूटिंग और क्रिकेट सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की एलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। इससे पहले वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। मार्शल आर्ट खिलाड़ी सुचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग की सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज T20 के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी भागों से मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी जिलों के साथ ही शेष हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सुस्त रहने की संभावना है। इस बीच विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग में कल कुछ स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की है। मॉनसून के दौरान इस बार अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य या सामान्य से कम दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए समन्वित रूप से ठोस कदम उठाना जरूरी। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में कल अध्यक्ष का चुनाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में 25 सितंबर को महापौर चुने जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मेलों को लेकर दशमी तिथि पर धार्मिक उल्लास, मंदिरों में आज जागरण। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, शूटिंग में 2 रजत पदक हासिल हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जिले के रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव जी की अवतरण तिथि भादवा शुक्ल पक्ष द्वितीया से इस वक्त रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना लेकर भक्त बाबा के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। देश भर से आए श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। कानून और शांति व्यवस्था के लिए

पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना की मानव रहित युद्धक क्षमताओं को नई धार देने के उद्देश्य से जैसलमेर में पिछले दिनों ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय मानव रहित प्रणाली उद्योग के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों की क्षमता का आकलन करना रहा। 3 दिन के आयोजन के तहत पोकरण रेंज में युवा और काउंटर यूएस तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लॉजिस्टिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित तकनीक, स्वायत्त नेविगेशन और उन्नत पैलोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया। इन तकनीकों के जरिए निगरानी, लक्ष्य भेदन, लॉजिस्टिक और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। इस आयोजन ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। जैसलमेर में सुरक्षा और सहभागिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बीते दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रवास के दौरान पुलिस थानों, बॉर्डर आउट पोस्ट और गांवों का जायजा लिया और सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया। श्री शर्मा ने गांव जालूवाला पहुंचकर सीमा संवाद और जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत जैसलमेर नगर परिषद के 44 और पोकरण नगर पालिका के 25 वार्डों की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड परिणामों में भाजपा के 25, कांग्रेस के 15 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। वार्ड संख्या 23 में कांग्रेस प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। जैसलमेर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से विजय और कांग्रेस से निर्मल पुरोहित मैदान में हैं। इधर ग्राम पंचायतों के वार्डों और सरपंचों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के तहत संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों के उपखंड अधिकारी कार्यालयों में 24 सितंबर को लॉटरी आयोजित की जाएगी। जिले में गर्मी के तेवर एक बार फिर तेज हो गए हैं। सूर्य देवता के तीखे तेवरों के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन में तेज धूप के कारण शहरवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। विकसित भारत जनसेवा अभियान 2026 की शुरुआत जिले में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के साथ हुई। नाचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित शिविर में 61 लोगों ने रक्तदान किया। युवाओं, समाज सेवियों और आमजन ने इसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। वहीं वैशाखी ब्रह्मसर की ऐतिहासिक स्थली पर जिला स्तरीय आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। स्वर्ण नगरी ने 871वां स्थापना दिवस भी परंपरागत उल्लास के साथ मनाया। सोनार दुर्ग में भाटी वंश की कुलदेवी मां स्वांग्या जी की पूजा अर्चना और गायत्री यज्ञ के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ ही दुर्ग राज महल की छत पर ध्वज पूजन किया गया। जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव जी की प्रतिमा का पूजन कर जिले की सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए नगर परिषद जैसलमेर शहर के आधारभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, खेल और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित हैं। जोधपुर रामगढ़ बाईपास लिंक रोड पर महारावल जैसल देव जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। वहीं सोनार दुर्ग के आसपास हेरिटेज वॉकवे और किला पार्किंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के साथ जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

फैलिया आज री खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कयो प्राकृतिक आपदावां रे असर ने कम करने खातिर साझा रूप सू ठोस कदम उठानो जरूरी है। प्रदेश रे 305 नगरीय निकाया माए काले अध्यक्ष रो चुनाव वेला जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगमा माए 25 सितंबर ने महापौर चुनिया जावेला। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज रे मेले ने ले दसवीं तिथि माथे धार्मिक उचास। मिंदरा माए आज जागरण और एशिया

0: एशियाई खेला माए भारत रो शानदार प्रदर्शन, शूटिंग माए दो रजत पदक हासिल व्या। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कयो है कि अबार रे बकत माए आई कई प्राकृतिक आपदावा सुओ साफ कर दियो है कि जलवायु रे असर ने कम करने खातिर ठोस कदम उठानो जरूरी है। राष्ट्रपति आज नवी दिल्ली माए पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य माथे राखी जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रे समापन सत्र ने संबोधित कर रही ही। श्रीमती मुर्मू कयो कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रियो है कि जलवायु सु जुड़ियो जोखिम घणो गंभीर हो गयो है। वणा इन समस्या ने रोकने और उनसू निपटने खातिर स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर माथे सगला संबंधित पक्षां रे बीचे सक्रिय सहयोग ने मजबूत करने री जरूरत माथे जोर दियो।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: ध्यानजोग है कि सम्मेलन रो आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कानिसू करियो गयो हो। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य रे विषय माथे राखी जी दो दिनारे इन सम्मेलन माए न्यारा न्यारा देशा और खेतरा माए न्यायपालिका रे काम करने रे तरीका, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण सु जुड़िया प्रशासनिक अनुभवा और संस्थागत कार्य प्रणाली ने साझा करने रो मंच प्रदान करियो। प्रदेश रे 305 नगरीय निकाया माए काले अध्यक्ष रो चुनाव करियो जावेला। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका रे कुछ एक वार्डा माए पाछो मतदान रे चालता वठे 25 सितंबर ने वोट डाल्या जावेला। काले उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगमा माए महापौर पद खातिर वोट डाल्या जावेला, जदे की भीलवाड़ा और भरतपुर माए पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। आ दोनों नगर निगमा माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुन्या गया है। काले रे चुनाव माए परंपरागत रूप सु खास मुकाबलो भाजपा और कांग्रेस पार्टियां रे बीचे ही मान्यो जा रियो है। हालांकि कई जगह निर्दलियारी भूमिका भी खास बन्योड़ी है। उदयपुर नगर निगम माए भाजपा रा महापौर बनने तय है, वठी ने पार्टी पारस सिंह वी ने प्रत्याशी घोषित करियो है। इनी तरह अलवर माए भी भाजपा सबसू बड़े दल रे रूप माए सामी आई है और अठे निर्दलिया रे सहयोग सु पार्टी रो बोर्ड बनतो दिख रियो है। पाली और अजमेर नगर निगम माए कांग्रेस पार्टी सबसू बड़ी पार्टी बनर उभरी है, पण बहुमत रे खातिर जरूरी पार्षदा ने समर्थन वास्ते वाने निर्दलिया रो सहयोग लेनो वेला। बीकानेर नगर निगम माए कांग्रेस साफ बहुमत मिलियो है, वठी ने पार्टी रा अनिल कल्ला रो मेयर बनो लगभग तय है। नशा मुक्त भारत अभियान रे तहत देश भर माए कई गतिविधियां राखी जा रही है। अभियान रे तीजे चरण रो शुभारंभ आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पंजाब रे फाजिलका जिले सु करियो। केंद्रीय मंत्री कयो के ओ अभियान देश री भावी पीढ़ी ने नशेरी लत सु बचावन रो कार्यक्रम है। वणा कयो के केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नेतृत्व माए एड़ा कई कार्यक्रम हाथ माए लिया है जिका समाज सुधार सु जुड़िया है। इन रो मकसद राष्ट्र ने विकसित भारत बनानो है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: इन बीच देशव्यापी अभियान रे तहत आज नशा मुक्त भारत साइकिल रैली राखी जी। कई जगह मोटियारा ने नशा नी करने री शपथ दिराई जी। कार्यक्रम माए युवावा और सामाजिक कार्यकर्ताओं रे साथ है बड़ी तादाद माए जनप्रतिनिधि भी शामिल हुआ। जोधपुर वायुसेना स्टेशन माथे इन दिना भारत और जापान री सेनावां रे बीच है वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 संचालित करियो जा रियो है। वायु आत्मरक्षा बल रे साथे साथे द्विपक्षीय अभ्यास माए उन्नत परिचालन मिशना और दोनों वायुसेनावां रे बीच है व्यापक पेशेवर आपसी तालमेल माथे ध्यान केंद्रित करियो जा रियो है। 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार ने पूरो वेला। अभ्यास माए भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30, MKI और राफेल समेत न्यारा न्यारा तरह रा आगे होर

0: ભગવાન માથે હે કાલે આખરી દિન મહાઆરતી રે સાથે મેળેરો સમાપન વેલા માણા જેસલમેર ખબરનવીસ બતાયો કે 9 દિનારે મેળેમાં રાજસ્થાન અર આસેપાસેરા રાજ્યા સુ ઘણી તાદાદમાં શ્રદ્ધાલુ બાબા રે જયકારે સાથે ભીડા હુયા.
1: રામદેરા મેં ચલે લોક દેવતા બાબા રામદેવ કે મેલે મેં વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓ કા સંગમ દેખને કો મિલ રહા હૈ. રંગ બિરંગી પતાકા ઓર ઘોડે લેકર દેશ કે વિભિન્ન કોનો સે આયે भक्त उत्साह एवं उमंग के साथ बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं. श्रद्धालु अपने साथ बड़ी बड़ी ध्वजाएं और घोड़े लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं. शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के चाक चौकर प्रबंध किए गए हैं. मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर.
0: धर्म और गो रक्षक तेजाजी महाराज री दशमी माथे भी प्रदेश भर माए धार्मिक आयोजन हो रिया है. तेजाजी री जन्म स्थली नागौर जिलेरा खड़नाल माए सालाना मेले माए आज पहले दिन भी घनी तादाद माए श्रद्धालु आस्था रे साथ है जात देवन पहुंच रिया है. ओ मेलो 2 दिन भरेला और ब्यूरो माना खबर नवीसु.
2: रात्रि जागरण में कलाकार तेजा गायन वे भजनों की प्रस्तुतियां देंगे. मुख्य मेला सोमवार को आयोजित होगा जिसमें जिले के साथ अन्य जिलों एवं प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पैदल और वाहनों से खरनाल पहुंचेंगे. सोमवार शाम को खरनाल से नागौर तक साइकिल दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा. मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं. पुलिस, आरएसी, होमगार्ड और गश्ती दल तैनात रहेंगे. सीसीटीवी व ड्रोन से भी निगरानी होगी. इसके साथ मेले के दौरान सुबह 6 से रात 8 बजे तक NH-62 पर खरनाल जोधपुर रोड का यातायात टांगला फांटा से रिंग रोड होते हुए बाईपास की ओर डाइवर्ट रहेगा. श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर.
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रदेशवासियों ने बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज जी दशमी माथे शुभकामनावां दी है. राज्यपाल आपरे संदेश माए कहो है कि लोक देवता रामदेव जी और तेजाजी रो जीवन लोक कल्याण ने समर्पित रियो है. जापान रा नागोया माए चाल रिया 20वें एशियाई खेला माए आज भारतीय खिलाड़ी शूटिंग समेत न्यारी न्यारी खेल होड़ा माए शानदार प्रदर्शन करियो है. भारत री एलावेनिल वलारीवन 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत होड़ रा रजत तमगो आपरे नाम करियो. वना टीम रे रजत तमगे रे पाछे आपरो व्यक्तिगत रजत पदक जीत्यो है. इनसु पहल्या वलारीवन सोनम मस्कर और विदर्शा विनोदरी टीम ने देश री महिलावारी 10 मीटर एयर राइफल टीम होड़ रो पहलो रजत तमगो दिलायो. मार्शल आर्ट खिलाड़ी सुचिका तारियाल इतिहास रचतव्या महिलावां ने 60 किलोग्राम वर्ग रे सेमीफाइनल माए पहुंचर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स माए भारत रो पहलो तमगो पक्को कर दियो है. वठी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज T20 रे दूजे सेमीफाइनल माए बांग्लादेश ने 114 रन सु हरार फाइनल रो टिकट कटायो. फाइनल मैच मंगलवार ने भारत और श्रीलंका रे बीच खेलो जावेला. अठी ने भारतीय महिला हॉकी टीम पूल बी रे पहले मुकाबले माए उज्बेकिस्तान ने 19-0 सु रोंद और शानदार शुरुआत करी. भारत रो आगलो मुकाबलो काले इंडोनेशिया सु वेला. अब मौसम प्रदेश रा पश्चिमी और सरहदी भागा सु मॉनसून री विदाई शुरू वेगी है. वठी ने पूर्वी और दक्षिणी जिला रे साथ है ही बाकी हल्का माए बिरखारी गतिविधियां कमजोर पड़ रही है. मौसम महकमा रे मुजब आवता कुछ एक दिना ताई प्रदेश रा घनकर भागा माए मॉनसून सुस्त रहने री आस है. इन बीच महकमो उदयपुर और कोटा संभाग माए काले कुछ एक थोड़ा माथे हल्की बिरखा होने री आस जताई है. सामान्य बकत सु करीब 2 दिनारी देरी सु विदा हो रही है मानसून रे चालता. इन बार घनकर थोड़ा माए बिरखा सामान्य या सामान्य सु कम दर्ज हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला. आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला. ई सारू आप ई 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1-800-11-7800 माथे राय भेज सको हो. नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ई विचार भी भेजा जा सके है. और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कयो प्राकृतिक आपदा मारे असर ने कम करने खातिर साझा रूप सू ठोस कदम उठानो जरूरी है। प्रदेश रे 305 नगरीय निकाया माए काले अध्यक्ष रो चुनाव वेला जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगमा माए 25 सितंबर ने महा

0: और चुनिया जावेला। लोक देवता बाबा रामदेव और तेजा जी महाराज रे मेला ने ले दशमी तिथि माते धार्मिक उछास मिंद्रा माए आज जागरण और एशियाई खेला माए भारत रो शानदार प्रदर्शन शूटिंग माए दो रजत पदक हासिल हुआ। इंद्रे साथे ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो। पाणो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती, प्रायोजक सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: ग्राम भारती सुनबाला सगड़ा भाई और बिना अश्विनी कुमार सेन को घनो घनो राम राम। रेणु जी थाना भी घनो घनो राम राम।
3: राम राम सा।
2: रेणु जी देखो आज है 20 सितंबर
3: जी सर,
2: और 20 सितंबर यानी सफाई दिवस, और देखो विश्व सफाई दिवस प्रत्येक आपा 20 सितंबर ने मनावा था
3: जी,
2: और यो दिवस स्वच्छता को महत्व समझा हुआ और लोगों ने अपना आसपास का वातावरण साफ रखवा के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। यानी स्वच्छता केवल अपना घर तक ही सीमित कौन है, बल्कि सड़क, विद्यालय, कार्यालय, बाजार, सार्वजनिक स्थान और एक अलावा जो आप बात करा नद्या, प्राकृतिक पर्यावरण यानी सबने स्वच्छ रखबो अपनी जिम्मेदारी बने जाए
3: जी सा। सही के यहाँ अश्विनी भाई जी, हाँ आपा अपना खुदरा शरीर और कपड़ा री सफाई रखा बिया ही आपा अपना मोहल्ला, अपनी गली और अपना गांव शहर ने भी सफाई रखनो अपनी जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो स्वच्छ वातावरण की बात करा ना आपा, तो स्वच्छ वातावरण को आपने जो स्वास्थ्य माला सीधो प्रभाव पड़े जाए
3: जी।
2: कहीं गंदगी के कारण देखो कई बार देखा जाएगा आप मच्छर मक्खिया और बंका कई प्रकार का हानिकारक जो जीवाणु पैदा होते ना, जैसे आपने जो बीमारियां फैले जाए आपने तो वह हो डेंगू, मलेरिया, हेजा, टाइफाइड और कई प्रकार की छोटी वगैरह बीमारियां जो हो जाए। यदि आपा आपने आसपास कचरो जमा न हो बजा और साफ सफाई को ध्यान रखा तो कई प्रकार की आप बीमारियां से भी आपा बच सका जाओ और आपने समाज ने भी बचा सका जाओ
3: जी सा। सही बात किया अश्विनी भाई कि इमा राजस्थान की आप परंपरा रही है कि आपा सफाई को हमेशा सुई ध्यान रखा। हाँ जी, राजस्थान की परंपरा में थे मांडना सुनिया होला कि पहले वाली जो लुगाया ची वह पहली आंगन ने पहली साफ कर और फिर भी कर चौक माए में मांडना मांडती रहे। आज सिर्फ सुंदरता वास्ती कौन करिए, इको वैज्ञानिक कारण हुआ है।
2: अच्छा।
3: क्योंकि वह वैज्ञानिक दृष्टि से कीटाणुआ ने दूर रखने रो एक देसी तरीको हो। इक अलावा आप जानो ही हो दिवाली भी आबाड़ी है, दिवाली और त्योहार में भी अपने राजस्थान में बहुत ही सफाई करी जावे है। इके अलावा आपने राजस्थान में जोहड़ है, बावड़ी है, कुरारी जो सुतराई करा हाँ

0: भाभी आपा मान्यो जावे कि आपा ने गंदो ना करा, राजस्थान की परंपरा रही है। इके अलावा प्लास्टिक कचरो, आज जो सबसे बड़ो संकट है वो है प्लास्टिक,
1: बिल्कुल
0: सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि इसु बहुत ही नुकसान भी होवे है, जिया पशुधन पर आघात पहुंचे है, जिया अपनी गोमाता और दूजा मवेशी कचरेरी पन्निया खाए बीमार पड़ जावे है। राजस्थान जिया मरुस्थलीय प्रदेश में यो संकट बड़ो ही गहरो है, जमीनरी उपजाऊ क्षमता भी प्रभावित हो जावे है इसु। प्लास्टिक सैकड़ों बरसा तणी गले कोनी, जिसु अपनी उपजाऊ भूमि बंजर हो जावे है,
1: बिल्कुल
0: नालियारी भी जाम कर देवे है। तो आपा ने आ चीजा को किसान भाई बहना, ग्रामीण भाई बहना ने, दादा नाना सबने ही बात को ध्यान रखनो चाहे कि स्वच्छता ही वरदान है। स्वच्छता आपा आसपास रखा ला तो आपरो पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल यानी थे सही बता रहे हो, देखो साफ
0: हाँ
1: सफाई का तो आपा ने रखना चाहिए, और आपा अपने घर और आसपास सफाई रखवा के साथ साथ अगर दूसरा ने भी आपा स्वच्छता के लिए प्रेरित करा ला, आपा ने बता वाला, आपा ने जानकारी दिला कि कौन कौन सी आपा ने हानि हो सके थे। तो सार्वजनिक इस्तेमाल कचरो कौन वेलो, बिल्कुल ही यानी कचरो नहीं फेंका ला, शौचालय को उपयोग आपा करा ला, पेड़ पौधा की रक्षा करा ला, और जल स्रोत को प्रदूषण से बचावा में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी ने अपना वाला, तो कचरा से आपा बच सका जाए। यानी आपने आस आपा ही सुंदर न रहे अपना घर नहीं नहीं बल्कि आस पड़ोस में मोहल्ला ने, और आने सब आपा स्वच्छ करा ला, सुंदर करा ला, साफ सफाई करा ला, तो अपने समाज भी स्वच्छ हो लो।
0: सही कह रहा हो, इलिए तो राजस्थान माए में कहवा चाहे कि मेहमान भगवान हुए पधारो मारे देश। बट सोचो अगर आपने घर और गाय मान ने कचरा रा ढेर होवेला तो अपना आवाला मेहमान काई सोचेला। तो आज स्वच्छता दिवस में आपने संकल्प लेनो चाहे जे ग्रामीण बहना और भाइया ने कि आपने स्वच्छ समाज ने राखनो है, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ दिखावो कोनी, आपनी सोच और संस्कार की पहचान है।
1: बिल्कुल देखो बहुत बढ़िया बात बताया स्वच्छता के मारे, और अब अपना प्रोग्राम ने आगे बढ़ाता हुआ अच्छे चिल चलो जानकारी को, और जानकारी दे बना आपने बीच पधारे है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जैसे आज आप जानकारी ले ला सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी आप काय तरीका से कर सका था,
0: तो दिलाओ जानकारी।
1: लेकिन बीच से पहले सुना एक छोटा सा संदेश।
2: सुने सुनाएं,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार,
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: श्रोताओं आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सु आप पधार्या, और आज आप जानकारी ले वाला सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी आप किण भांति करा। तो सबसे पहले करा पावना रो स्वागत, राम राम सा।
5: राम राम किसान भाइयों।
4: डॉक्टर साहब प्रश्न मारो जो छे और शायद करसा बाहर बेड़ा को भी होवे लो कि सरसों की बत्ती पैदावार अगर आप न चाहे जे करसा बाहर बढ़ाना चाहे जे चोखी जो किस्म छे वह बताओ, माको नाम बताओ सर।
5: हाँ देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी फसल से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि जो अन्य कृषि क्रियाओं के साथ साथ आप एक अच्छे बीज की और अच्छी किस्म का चयन करें
4: जी।
5: क्योंकि किस्म की जो उत्पादन क्षमता होती है वो अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर करती है, और भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा अभी तक विभिन्न परिस्थितियों हेतु कई किस्मों विकसित किया गया है
4: जी।
5: जैसे कि अगर आप देखें कि कुछ हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां पर सरसों की बुआई पहले हो जाती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर खरीफ की फसल की कटाई करने के बाद में सरसों की खेती की जाती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है तो वहां पे असिंचित अवस्था में खेती की जाती है, कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे भी इलाके हैं जहां पर सरसों की खेती थोड़ा सा देरी से होती है यानी कि नवंबर तक भी चली जाती है
4: जी।
5: तो ये जो विभिन्न परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के लिए जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है उसके अंतर्गत अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित अनुसंधान परियोजना चल रही है, जहां पर विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा जो हमारे देश भर में है और वहां पे इन किस्मों का विकास किया जाता है और उन्हें अलग अलग परिस्थितियों के लिए चिन्हित किया जाता है। जहां तक सरसों की सबसे अच्छी किस्म का सवाल है तो किसान भाइयों ये ध्यान रखो कि कोई भी एक किस्म सभी परिस्थितियों में एक जैसा उत्पादन नहीं देती है
4: जी।
5: और किस्मों की जो उत्पादन क्षमता है वो जलवायु पे,

0: भूमि पे, और आप कौन कौन सी तकनीकें अपना रहे हैं, वैसे कई कारकों पे ऊपर निर्भर करती है। हालांकि जो कुछ किस्में ऐसी है जिन्हें हमें भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों के लिए अनुशंसित की गई है, मैं आप किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप किस्म का चयन करें तो आप ये देखें कि आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ कितने गर्म रहता है या ठंडा रहता है, साथ के साथ फसल पद्धति क्या है,
1: जी
0: यानी कि आप खरीफ में खेत खाली रख के सरसों खेती कर रहे हैं या खरीफ में किसी फसल की बुआई करके उसकी कटाई के बाद खेती कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। भूमि का प्रकार कैसा है, आपके पास सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, और मिट्टी के आधार पर ही उचित किस्म का चयन करें ताकि आप सरसों के उत्पादन में वृद्धि करके लाभ कमा सकते हैं। अब आप देखें किसान भाई, तो सरसों अपने रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका विशेष स्थान है,
1: जी
0: और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देती है। और अभी हमारे भारत के अंदर चूंकि तिलहनों का उत्पादन कम है तो भारत सरकार द्वारा भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और इसका एक फायदा और ये है कि अगर आप इसकी एकल खेती नहीं कर पाए तो मिश्रित खेती भी आप कर सकते हैं। दो फसलीय चक्र में भी आसानी से इसकी खेती की जाती है, और अच्छी किस्म का चयन करके आप करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों की पैदावार ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई कौन सी किस्म, जैसे आपने सवाल किया
1: जी
0: कि अलग अलग परिस्थितियों के लिए है, तो जो हमारे सरसों की विभिन्न इलाकों के लिए जो किस्मों की अनुशंसा की गई है उसको कई श्रेणी में बांटा है।
1: जी
0: जैसे कि एक अवस्था होती है सिंचित और समय पे बुआई के लिए है, तो सिंचित और समय से बुआई का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 20 अक्टूबर तक और अधिकतम 25 अक्टूबर तक जिन क्षेत्रों में बुआई हो जाए और आपके पास एक सिंचाई की सुविधा है, तो उन क्षेत्रों के लिए हमारे यहाँ से जो अनुशंसित की गई है उसमें से मुख्य किस्में गिरिराज है, फिर बीपीएम 1825 है, आरएच 1975 है, आरएच 749 है, पीएम 37 है, तथा कुछ संकर किस्में भी है जिनमें से मुख्य एनआरसी एचबी 506 है, आरएचएच एक उपयुक्त किस्म है। तो किसान भाइयों, ये वो किस्में हैं जो नवीनतम है।
1: जी
0: वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, पुरानी भी है, लेकिन मैं आपको नवीनतम किस्मों की जानकारी दे रहा हूं। तो ये तो हो गया सिंचित और समय से बुआई के लिए। अगर आपका असिंचित क्षेत्र यानी कि आपके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं है और जो वर्षा ऋतु का जो पानी है उसी को आपने संरक्षण करके अगर सरसों खेती करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था के लिए हमारे पास में DRMR 1165-40 है, RH 1424 है, RS 725 है, RS 761 है, RS 406 है, और एक हमारे गंगानगर के केंद्र है राजस्थान के अंदर ही RGN 298 ये उपयुक्त किस्म है असिंचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, कई क्षेत्र ऐसे भी आते हैं जहाँ पर किसानों के लवणीय और क्षारीय भूमि है या लवणीय क्षारीय पानी है, तो अगर ऐसी आपके यहाँ परिस्थिति है तो इन किस्मों की बजाय आप CS 58 और CS 60 किस्म का चयन करें, और ये हमारा करनाल में एक संस्थान है, भारतीय केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ से इन किस्मों को आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अब आप बात करें कुछ ऐसा भी क्षेत्र जो अगेती बुआई करना किसान चाहते हैं, लेकिन हालांकि राजस्थान में ऐसा क्षेत्र नहीं है, फिर भी अगर कोई किसान भाई सितंबर के अंदर ही कोई परिस्थिति ऐसी बनती है किसी जिले के अंदर है, तो वहाँ पर आप PM 27, PM 28 और इस तरह की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। एक किस की परिस्थिति ये भी आती है कि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कई बार खरीफ की फसलों की कटाई बहुत देर से होती है,
1: जी
0: जैसे अक्टूबर तक कटाई हो रही है, तो अक्टूबर के लास्ट तक या 10-15 नवंबर तक अगर आपको बुआई करनी है तो वहां पर आप देरी से बुआई के लिए जो उपयुक्त किस्म उनका चयन करें, और उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा ब्रजराज है, राधिका है, बीपीएम 11 है, एनआरसी एचबी 101 है, आरजीएन 236 है, ये एक उपयुक्त किस्म है देरी से बुआई के लिए। और इनके साथ साथ किसान भाइयों, हमने कुछ गुणवत्ता वाली सरसों की किस्मों का भी विकास किया है, क्वालिटी की किस्में बोलते हैं, जिसमें कि यूरिक एसिड कम होता है और खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। अगर आप उन क्वालिटी वाली किस्मों को करना चाहते हैं तो उसके लिए PM 32 है, PM 34 है, RS 1706 है, ये जीरो क्वालिटी की यानी कि इनमें यूरिक एसिड कम होता है, 2% से कम है, और इसके अलावा 00 क्वालिटी की है यानी कि जिसमें यूरिक एसिड भी कम है और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा भी कम है, वो PM 31।

0: PM-33 है, PDZ M-35 है, PDZ M-36 है। तो ये किस्में हैं जो गुणवत्ता वाली है। तो अब आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यह समझने की बात यह है कि हर परिस्थिति के लिए अलग किस्म है। एक ही परिस्थिति के लिए कोई ऐसी किस्म नहीं है जो हर परिस्थिति उपयुक्त हो। तो आप अपनी परिस्थिति, सिंचाई के साधन, मिट्टी, जलवायु के आधार पर इन्हीं में से आप किस्मों का चयन करें तो आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बहुत ही सरल शब्द का मायना है। सरसों की चोखी किस्म कौन सी आपने लिए, अपना क्षेत्र के लिए, अपना करसा भायर बहना के लिए रहवेली समझाया। सागे ही आपसे यह भी जानबो चाहवाला कि अपना जो करसा भायर बहना छे, अगर किस्मा को चयन करे तो किन बात की बाता को ध्यान रखे है जिससे कि वाने हानि नहीं बल्कि लाभ उठावे।
0: देखो किसान भाइयों, एक तो ये याद रखें, जैसा कि हमने पहले कहा आपको कि भाई आपकी जो परिस्थिति का आकलन कर लें कि आप कब बुआई करना चाह रहे हैं, सिंचाई के साधन कैसे हैं, मिट्टी का प्रकार कैसा है, आपका फसल पद्धति कैसी है, उसके हिसाब से किस्म का चयन करें जो मैंने बताया है कि अभी आपको किस्मों का उनमें से चयन करना चाहिए।
1: जी
0: अब जहाँ तक बात है तो एक तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमेशा एक अच्छे संस्थान से ही बीज का क्रय करें। कई बार क्या होता है, बाजार में आप जाएंगे और उसका बीज वो आपको किस्म कोई बोलेगा, दे कुछ और देगा। तो एक तो किसी भी दुकान वाले से पक्का बीज लें जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे कोई सरकारी संस्थान हो, कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग राजस्थान राज्य बीज निगम हो, यहाँ से आप इन किस्मों को अगर लेते हैं तो उससे एक शुद्धता की एक विश्वास रहता है।
1: जी
0: दूसरा, हमेशा आप प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें कि जब भी आप देखें कि वो प्रमाणित बीज होना चाहिए। तीसरा, जब भी आप बीज का चयन करें, किस्म का चयन करें, तो ये याद रखें कि आपका जो बीज है बुआई से पहले उस बीज को आप उपचारित जरूर करें। हालांकि आजकल कुछ संस्थानों द्वारा बीज को उपचार करके भी दिया जा रहा है, तो ये भी आप जब बीज को खरीदारी करते हैं तो आप पता कर लें। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखने, अपनी परिस्थिति के अनुरूप और अपना जो ये किस्मों का चयन करने के बाद में बुआई के समय के हिसाब से उसमें बुआई करें, तो इन बातों का आप ध्यान रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सु अगर आपने चोखो बीज चाहे जे और उचित मात्रा में चाहे जे तो किन भांति आपने प्राप्त हो सके करसा बाहर बढ़ाने व ले सके वह बताओ सा।
0: हाँ देखिए किसान भाइयों, हमारे संस्थान द्वारा, हमारा संस्थान भरतपुर में सेवर के अंदर स्थित है और हम प्रतिवर्ष किसानों को जो भी प्रचलित उन्नत किस्में होती है उसका बीज उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। और इस साल भी 15 सितंबर से हमारे यहाँ बीज पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान में संस्थान पर ये जो गिरराज किस्म है वो उपलब्ध है। DRMR 1165-40 उपलब्ध है, BPM 11 हमारे पास में उपलब्ध है, BPM 1825 हमारे पास में उपलब्ध है और इसके अलावा DRMR 150-35 भी उपलब्ध है जो देरी से बुआई के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए अनुशंसित की गई है। फिर राधिका हमारे पास में उपलब्ध है, NRCHP 101 उपलब्ध है। ये बीज हमारे पास में उपलब्ध है और 15 सितंबर से हम बीज पखवाड़े के दौरान जब तक हमारे पास में बीज रहेगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम देंगे। और इसमें ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि अभी फिलहाल जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ही आपको ये बीज लेना पड़ेगा। हाँ इतना कर सकते हैं कि जैसे एक किसान भाई अपना एक समूह, मान लीजिए आपका कोई FPO है या कोई आपके 8-10 किसान एक साथ लेना चाहते हैं तो वो एक या दो किसान आके ही उनका बीज भी हम ले सकते हैं, हम उनको उपलब्ध करवा देंगे। तो यही तरीका है कि जो आप 15 सितंबर के बाद से कभी भी हमारे संस्थान में आके 10 से 5 और वो बीज ही आप प्राप्त कर सकते हैं इन किस्मों का।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बीज की किस्मा बताई, किन बात को आपा ध्यान रखना है ये चीज अभी आप बताई और कठेसु आपा बीज जो छे प्राप्त कर सका ये भी आप बताई। सागे ही आपसे जानबो चाहवला कि अगर माटी की बात करा तो सरसों का खेती कताई किन भात की माटी उपयुक्त मानी गई छे और खेत की तैयारी किन भांति करा वह बताओ सा।
0: देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही है कि हम मिट्टी को माँ कहते हैं और जैसे कि हमने कहा कि अच्छे किस्म का चयन कर लिया, फिर अच्छे प्रमाणित बीज का चयन कर लिया, बीज को आपने उपचारित भी कर लिया और समय पे बुआई भी कर ली, उसके बाद जो 4 महीने तक फसल रहेगी
1: जी
0: वो आपकी उसी मिट्टी में रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर फसल के लिए प्रकृति ने कुछ मिट्टी के प्रकार बनाए हैं कि कोई फसल किसी तरह की मिट्टी में ज्यादा उत्पादन देती है, कोई दूसरी फसल किसी दूसरी मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन सरसों की एक विशेष

0: विशेषता यह है कि ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी या भूमि में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अगर मैं सबसे अच्छी मिट्टी की बात करूं तो किसान भाइयों, जहां पर भूमि दोमट है वहां पर ये सबसे अच्छी किस्म होती है, जिनका पीएच मान भी करीब 7 हो, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल होगी, तो वहां पर इसकी खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर इसकी उपज आप चाहें तो हल्की दोमट से चिकनी दोमट मिट्टियों तक में भी इसकी खेती की जा सकती है। वैसे तो हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिट्टी है तो बहुत ही अच्छी है, और दूसरी मिट्टी में होगा तो कुछ मिट्टी का प्रबंधन करके उसको अच्छी तरह से मैनेज करके भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पीएच मान 7 होना चाहिए। अगर आपकी सारी भूमि है लवणीय भूमि है तो उनका आप प्रबंधन करें कि किस तरीके से पीएच मान को न्यूट्रल करने की कोशिश करें। अगर राजस्थान में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भारत में कई जगह ऐसी स्थिति है कि अम्लीय भूमि भी हो सकती है,
1: जी
0: तो वहां पे लाइम का प्रयोग करके भी उसको पीएच मान को थोड़ा बढ़ाएं। बहुत ज्यादा अगर अम्लीय भूमि होगी, क्षारीय भूमि होगी, तो ये एक तरह से मिट्टी उपयुक्त नहीं है और इस पे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि दूसरी फसलों के मुकाबले लवणीय भूमि क्षारीय भूमि में भी अच्छी पैदावार देती है, और जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर ऐसी जगह, तो आपको किस्म का जो चयन है वो हमारे लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए भी, जैसे CS58 है, CS60 है, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है,
1: जी
0: तो खेत में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, और अगर लवणीय है तो आपके खेत में कुछ समय तक पानी भरें जिससे लवण पानी के साथ घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाए। और जहाँ की जमीन क्षारीय है वहाँ प्रति तीसरे वर्ष आप जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए, और जिप्सम की आवश्यकता आपका पीएच मान कितना उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि जिप्सम का प्रयोग अगर आप क्षारीय भूमि को थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए कर रहे हैं तो उसको मई जून में जमीन में मिला देना चाहिए, ताकि फिर जो बारिश होती है और उसके बाद में उसमें क्रियाएं होकर आपके क्षारीय भूमि का एक अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा आपने पूछा सवाल कि खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो देखो किसान भाइयों, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि इसकी खेती दो तरीके से की जाती है राजस्थान में। एक तो किसान भाई ऐसे होते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खरीफ में कोई फसल नहीं लेते हैं, और समय पे यानी कि सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर प्रथम सप्ताह से बुआई शुरू कर देते हैं।
1: जी
0: तो अगर आप इस तरीके की खेती कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा खेत की तैयारी के लिए कि जब भी हमारे खेत में बारिश होती, अच्छी बारिश हो, तो अच्छी बारिश के बाद में आपको क्या करना है कि नमी के संरक्षण पे विशेष ध्यान देना है। तो अच्छी बारिश के बाद में जब भी खेत जुताई लायक हो जाए तो जुताई लगाएं और पाटा लगाएं, तो नमी संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संरक्षित नमी है उसी में हमको बुआई करनी है और उसी के अंदर आपको इसमें अंकुरण होना चाहिए। अच्छा, अगर संभव हो तो खेत की जुताई शाम के समय करके खुला छोड़ दें, ताकि रात्रि में अगर ओस वगैरह आए तो उससे भी कुछ नमी मिल जाती है, और प्रातः धूप तेज होने से पहले ही पाटा जला दें। और जब अंतिम बारिश हो जाए, जब आपको लगे, हालांकि हमारे को प्रिडिक्शंस भी आजकल हमने देखा है कि मौसम विज्ञान विभाग काफी हद तक सही करता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर 15 सितंबर के बाद में कोई अगर प्रभावी बारिश हो रही है तो उसके बाद में आप गहरी जुताई करके पाटा लगाकर नमी का संरक्षण कर दें, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई कर दें। हालांकि ये ध्यान रखें कि उस समय तापमान भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप 15-20 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खेत में कितनी नमी है,
1: जी
0: क्योंकि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा नमी और तापमान का। क्योंकि मान लीजिए आपके नमी बिल्कुल सूखती जा रही है, तो आपको थोड़ा सा बीज की मात्रा ज्यादा रख के भी आप बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि एक स्थिति ये होती है कि जब आपने कोई खरीफ में बाजरा कर रखा है, ज्वार कर रखा है, ग्वार की फसल कर रखी है, तो अगर आप ये फसलें करते हैं तो इन फसलों की कटाई के तुरंत बाद दो बार आप करीब कल्टीवेटर से आड़ी जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और आजकल तो रोटावेटर भी चलता है, एक बार आप रोटावेटर चला दें तो उससे क्या है कि जो इनके जड़ों के और इनके वो होंगे और ढेले वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी भुरभुरा बन जाएगी, जो सरसों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो ये दोनों परिस्थिति के लिए, अगर आप खेत खाली रख के कर रहे हैं तो आपको हर प्रभावी बारिश के बाद नमी का संरक्षण करना चाहिए, और जब आप खरीफ में कोई फसल ले रहे हैं तो कटाई करने के बाद में तुरंत अगर नमी कम है तो फिर आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी बुआई से पहले भी, क्योंकि एक मिनिमम सिंचाई होनी चाहिए, तब जाके आप उसकी बुआई कर सकते हैं। तो दोनों परिस्थिति में इस तरीके से कर सकते हैं। और सिंचित अवस्था के अंदर जैसा कि बताया ही है कि किसान भाइयों पर पानी की सुविधा होती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों,

0: पास खारा पानी है तो बुआई से पूर्व सिंचाई ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, सिंचित क्षेत्र का मायने द्विफसलीय पद्धति के अंतर्गत राई सरसों का खेत की जो तैयारी छे वह करसा भाईर बहन कहिया करे वह भी बताओ सर।
0: हाँ देखिए, अभी मैंने बताया द्विफसली पद्धति के अंदर, जैसे कहा कि भाई द्विफसली पद्धति का मतलब ये है कि खरीफ में कोई फसल हो तो उसकी तैयारी के लिए कि खरीफ फसलों की कटाई के बाद में पलेवा देकर प्रारंभ करें। पलेवा के बाद में जब भी आपका खेत जुताई लायक हो जाता है तो 2 या 3 बार जुताई करें और पाटा लगाएं, और ये ध्यान रखें कि हर दशा में खेत को, मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें। तो अगर वो बनाते हैं तो खेत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, जो सरसों की अधिक पैदावार उसकी जड़ें जमने के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी श्रोताओं, अबार आपा जानकारी लिया सरसों की उपयुक्त किस्मा और खेत की तैयारियां आपा किन भाते करा, और जानकारी देबा खातिर आया डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सुआ पधार्या। डॉक्टर साहब, इतनी कीमती जानकारी देबा के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार।
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार।
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
3: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: गांव की चौपाल पर बैठिया किसान भाइया ने अति चोखी जानकारी दिलाबा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चालो सा इन्हीं ज्ञानवर्धक बातारे सागे सुना एक सुरीलो राजस्थानी लोकगीत। सुनो सा।

0: और ई गीत के साथ ही ग्राम भारती कार्यक्रम में आज बस इतो ही। ई के साथ ही अश्विनी कुमार सेन
1: और रेणु ने
0: दो इजाजत करा।
1: राम राम साहब।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाएं,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार।
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार।
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
3: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये दिल आशिकाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ों में वेलकम फिल्म से।

श्वेता पंडित और आनंद राज आनंद की आवाज़ों में वेलकम फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

उदित नारायण की आवाज़ में वीर जारा फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए सुनिधि चौहान और हिमेश रेशमिया की आवाज़ों में, फिल्म का नाम 36 चाइना टाउन।

हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपका सुरूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए शान की आवाज़ में फना फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंध।

0: काका ते इतना बडेरा हो गया था ना मुंडियाड़ाल दौड़ देख ताने कितना साल हो गया हो।
1: ए मने तो 50 साल तो हो गया है, अब देख ला ई कौन नी है।
0: काका केड़ी लागे मने कने ले जाओ कनियो।
1: ए अब के ले जाऊं थाने तू भाई ने पूछ भोगाम में कई पूछा।
0: भाई जी
2: हां
0: आज कई हुणला
2: आज बस सुना भजन ली का भजन सुना दो।
0: काका आयो
1: आ बेजा
0: ए सरस्वती बाई के भेजो गजानन जी आलो।
1: ए ओइया मारी बेजा।

0: कर राम राम।
1: ए रोम रोम शाही रोम रोम शाही आपरो न्याओ भिजो को के नीर गो।
0: मा नाम चेतन राम है लालगढ़ बोलू।
1: ओ हो चेतन भाई लालगढ़ में कोई करयो
0: पड़ी गया काका।
1: ए जीजी मारे बेटा
0: पांचम
1: ओ जोगा बड़ो जोगा लिगो मोइदारार भिवार का नाम ऊंचा करो बेटा रे।
0: आओ काका।
1: ए तू बिरली के क्या बिनो के काका को भिजाओ
0: पुलिस।
1: ओ पुलिस बनेगा चोको पड़ी हो। ए जनी बोगाम के शुक लागे मोरा बेटा।
0: अच्छा लागे।
1: ए तुम्हारे मम्मी पापा काई करते हैं?
0: पापा बारे रहे मम्मी खेती काम करे।
1: अच्छा पापा बारे रे कुमुन गया तू पड़े चोको कितना भाई बहनों रे?
0: दो बहन दो बहन ना दो भाई।
1: अरे वाह वाह। ए लुनके
2: काको काका।
1: ए भाई का फोन है चेतन का लालगढ़ से कहता मैं पांचवी में पढ़ी जाऊँ तू बात करना चाहूँता को नहीं चाहूँता हो।
2: करूँ काका मैं बात करूँ फोन दे।
1: ए बोलो। हेलो
2: हेलो
0: सोनू भाई राम राम।
2: राम राम राम राम भाई जी काले मेला दस्यू है नहीं मेला जाओला कहीं हो
0: हाँ?
2: तो कीज गया ब्रिजे मेलो
0: ओनी समय
2: हर काल मेलो कहीं कहीं लाओला।
0: ए गई मिट यार
2: रमितिया कौन लाओ कहीं
0: अब मोटा हो गया पढ़े ही कहना।
2: बढ़िया छोटा बहन भाई कौन ही वाह सा वाह मोटा हो गया जन बाबे रे फेरी दे रहा हो कहीं मांगो बाबे कनु
0: मांगा कहीं फेरी दिया माता
2: वाह सा आज कहीं उनला
0: बाबा रामदेव का भजन।

0: Rom, rom, shai, rom, rom, shai, abro now, video, cooking here, go, video.
1: Now, move, rom, here, I go, here.
0: Oh, how much you like me, going to do?
1: नहीं
0: मैं
1: रेल में रिटायरमेंट होता
0: अभी। अजो रेल में काम करता अभी रिटायर हो होता हो।
1: हाँ होता।
0: अरे वर्ष जगो जो खाई बात दे थे तो टेंशन फिर हो जा। ए भाई यो।
1: हाँ जी।
0: ए थोने प्रोग्राम के योग लोगे हो।
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे मैं फोन आज लगी लगे ही कर गई।
0: अरे कोई बात नहीं अटावड़ी होगी और बाबे रे काल मेले में जाओगे।
1: हाँ मेरे साथ बाबे के।
0: अरे वो शिवा तो कहा सवाल करते उसका जवाब भी ना हो।
1: हाँ बतावा
0: ए काली गोरी गाय काट खाए।
1: हाँ
0: ए पानी देख देख चमक जाए क्या होती है।
1: कागलो
0: ए लुनके
2: कई को काका।
0: ए भाई तो के कागलो है पानी देख चमके कही है।
2: कागलो की को चमके न पानी काका।
0: ए तो कहीं चमके भाई को बोलो ए लो और बात करियो।
2: हेलो
1: हाँ लोनी भाई राम राम।
2: राम राम साहब पगे लगू
1: भगवान मनो करो
2: और दिनों दाप रखो गे
1: गाय है
2: गाय की सेवा करो।
1: गाय की सेवा करा रिटायरमेंट होटा बेटा
2: बढ़िया जन गाय की सेवा करो जन गाय तन पाचा मेवा दे दे दूध और दही घी।
1: हाँ दूध और दही घी।
2: हाँ गाय को दूध घी तो इमरत हुए हो।
1: हाँ
2: काके तन आड़ी पूछी नी
1: कई जी कौन है
2: बात तो आमने हुए पकर क्या
1: पकर क्या।
2: हाँ बे पानी के नेड़ा ही जे के।
1: हाँ
2: वे के काका
0: पूछी के होती हो पकर क्या होती है भाई के समझ में नहीं है आप भाई को पूछो भोगा में खाई पूछी
2: आज के होनोला प्रोग्राम
1: रामदेव जी का भजन होना है तो
3: नाम कृष्ण है गांव जोगलसर है।
0: ओ कृष्ण भाई जोगलसर में कोई करो
3: काका।
0: ए कितनी मारे भी जा
3: आठवीं में।
0: ओ डर गए जब के बोर्ड की परीक्षा आई।
3: हाँ
0: ए तू जोको पड़ी जोको लिखी हो।
3: हाँ काका।
0: ए काले मेलो भाई तू जावे कौन की माल पा पकुड़िया खाऊने
3: जावा नी काका।
0: अरे वम मारे बेटा ए मारी ढोक दी हो।
3: हाँ
0: मम्मी पापा क्या करते हैं।
3: पापा काम करे मम्मी की कौन करे।
0: अरे कितना भाई बहन जो थे
3: तीन भाई बहन।
0: ए जिनू पढ़ो ना।
3: हाँ
0: हेलो उनके
2: कई को काका।
0: ए भाई कहता हूँ पढ़ता हूँ आठ में तुम पढ़ के बात करते हो तो बोलो हेलो।
2: हेलो
3: कई करो लनी भाई।
2: आ बैठी हूँ भाई का ना तू कई करे रे।
3: ए पढ़ू।
2: आ संडे कई पढ़े रमियो को नी।
3: ए तो बोल्ड है।
2: अरे सही है बोल्ड है ब्रह्मा की करे ना।
3: हाँ
2: बोर्ड को इतना होश लागियो तो ना बार हुई।
3: हाँ
2: भाई आठ में तो बोर्ड परीक्षा हुई जन बार ध्यान रखे। एक गाड़ी बता
3: पूछो।
2: ए बिना इंजन के चलती जाए कभी न खाए खाना कान पकड़ कर पैर दबाओ अगर कहीं हो जाना।
3: कौन ना मेलूनी भाई
2: काका।
0: हाँ बेटा
2: हरे मज में बैठी के।
0: अरे बेटा हरे डोलो मोटरसाइकिल लुएगी।
2: काका मोटरसाइकिल नहीं होती है खाना नहीं खाती है मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना पड़ता है।
0: अरे भाई समझ में नहीं तुम्हारे काका आ रही है तुम भी जाओ।
2: काका ये तो साइकिल होती है।
0: आई ए भाई को पूछो भोगा में क्या पूछी।
2: कृष्ण भाई आज कहीं उड़ाला
3: रामदेव जी का भजन।
2: काका बाबे का भजन चलाई दो।
0: ए मैं अगरबत्ती खेऊं जाऊं तुम्हारी बेटा
2: ओए लो।

0: जय जय राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, अपरो नाम भिजो खोके नीर गांव भिजो।
0: गांव नागौर, नाम भवरलाल।
1: ओ हो भवर जी नागौर की जी को फिर मो।
0: बड़ली।
1: पाई करो थे।
0: पाई करा खेत में बैठा।
1: आ जाओ वो खेत में बैठ जाओगी। मेरा वो खेतिया मोड़ी है।
0: हाँ आपके की मोड़ी है।
1: आए देखो राम जी का खेल है भी रहा हो। ए भाई हो।
0: हाँ सर।
1: ए काले देखो देजे जी महाराज को मेलो है ने बाबे को मेलो देखी से मेले में जाओ।
0: अब मैं तो घरनाल।
1: अच्छा घरनाल जाओ। आए बकोड़िया माल पार जीमता जाइ जो।
0: हाँ घनी आजियो नहीं।
1: ए जरूर आओ यार। अबे काको एक सवाल करे उसका जुबा बिना हो।
0: बोलो।
1: ताकत का मैं बेमाना हूँ, तेज दौड़ का दीवाना हूँ, कई रंगों में भाया जाता हूँ, सबका जाना बेजाना हूँ, क्या होता है?
0: पल्ले खोपड़ी नहीं मारता।
1: ए लूनी भाई यो।
2: कई को काका?
1: कई को नहीं आता, तुमको आता है क्या?
2: हाँ काका, मने तो ते बेकर कई दिन पहले रिटाया नहीं।
1: आज डे तुम भी जाओ कई होता है।
2: ये तो तेजा जी की गाड़ी आती है लीलड़।
1: ए वेरी गुड, थैंक यू भाई जी, बात करो है। बोलो हेलो।
2: हेलो
0: हेलो लोनी। राम राम।
2: राम राम सर। राम राम सर। भाई जी टाबर चोली कई करे?
0: कई करे घरे लोग धंधे करे।
2: ए कल मेले हूँ कई लवला टाबर तई।
0: टाबर में ले जी ले ले टाबर आते है।
2: ले जून दिरा दो जन मैं आलू।
0: आजियो।
2: कई कई दिरा वाला बताओ।
0: चौकी लागे देखी थी।
2: आ मैं तो गणे यारी कचोरी यार खाऊं ला गुल प्यार।
0: बने गुल प्यार जूस लगे।
2: आज कई उड़ा ला।
0: तेजा जी महाराज सुना दो।
2: काका आयो।
1: आ भी जाओ।
2: ए भोरलाल जी के तेजा जी महाराज को जान दो।
1: ए मैं अगर भी दिखाऊं जाऊं तुम्हारी बेटा।
2: ओए ला।

0: है मारे भैया, वो तो भैया की बया की सबकी पसंद को पोगा में।
1: हेलो गौरबा,
0: यही पोगा में कोई बाइक गीते भजन ये होना चाहूंगा, तुम कहीं कहता हो?
1: काका दी त्वार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तक नागौर आकाशवाणी फोन करना है।
0: अच्छा फोन करना है बेटा, हमारी कोई नया भाई है, भाई ये जुड़ना चाहूंगा तो उसको नंबर बिजाना पड़ता है।
1: हाँ हुनो काका,
0: हुनो उषा
1: मिंडी 1500
0: आए
1: आटो दुओ।
0: अच्छा
1: दुओ चोको मिंडी 1 चोको आटो।
0: अच्छा वो के माते दी द्वार का फोन
1: करना है।
0: अच्छा ए भाई
1: कई को काका,
0: ए जी भैया का सुमे की कोमी में हम फोन नहीं ले सके तो उनका पाना तुमको बांच नहीं पड़ेगा।
1: हाँ काका अबार बांचू लो।
0: ए बांचू सा,
1: ए देखो जय किशन भाई गुड़ा भगवान दास हुए, जगदीश भाई चेतन राम दोनों लालगढ़ हुए, सुखदेव राम जी सुमेरिया है, काका एक है भंवर सिंह जी भाटी गुगरिया लियूं।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लूणी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाइयो,
1: हाँ काका,
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो कसका है?
1: है जितेंद्र कुमार।
0: आज के प्रोग्राम के फसदूत की था
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंदेश लगो हमारे बीजा,
1: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो।
0: हेलो गवर्नमेंट, आपने के नेर होगी
1: लून की नैदी राव सीख और करते हैं
0: राम राम शाय।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1,000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर

0: चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है। पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितम्बर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
4: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
1: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
0: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा।

0: से देश सेवा के चौथे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन भारत जैसे देश में पानी की कहानी सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है, ये खेती की कहानी है, गाँव की अर्थव्यवस्था की कहानी है, महिलाओं के श्रम की कहानी है, स्वास्थ्य की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कहानी भी है। पिछले 25 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो जल प्रबंधन का विषय उनकी प्रशासनिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं में रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत चर्चा करेंगे 25 वर्ष पानी संकट से सुरक्षा तक। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में राष्ट्रीय जल मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते
3: जी, धन्यवाद।
1: अशोक जी, सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो जल क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव रहा है, मोदी जी की जो गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जल सुरक्षा के अंतर्गत किए गए उपायों को आप किस तरह से आंकते हैं?
2: धन्यवाद। पहले मोदी जी को बधाई 25 ईयर्स कम्प्लीशन करने के लिए। मोदी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रिन्यूएबल सर्विस, सब में इकोनॉमी में क्या है, बट जो वाटर सेक्टर में जितना योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम के तौर पे किया था। बेसिकली उनके जो फिलॉसफी थे वाटर के बारे में, ये वाटर एक बुनियादी रिसोर्स है जिसको हम मानते थे पहले कुदरत की देन है, तो हमेशा आते रहते हैं, बट उसको भी संभालना है, उसको डेवलप करना है। ये उन्होंने 2001 में जब सीएम गुजरात बने थे तब से वो शुरू कर लिया था। कच्छ में वो पानी लेके उसको अच्छा वो खासा बनाया, ग्रीनरी बनाया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लाइन, उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था। प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था। जल का मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे, उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
1: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से, उन्हीं जो मिशन थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
4: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है। वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं जमाने से चला आ रहा है, ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की वजह से, वो भी है। और चौथा जो है वो हर जगह आप देखने को मिलता है पूरे भारत में, जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है, नमक जहां से पैदा होता है, जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का आप प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी।

0: जब वहां पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पानी की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है इस तरह का। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा
1: जी।
0: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई, बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: जी हाँ, खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुँचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम।
0: और आप देखिए ना, पानी नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की संबद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
1: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
2: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुंच गई थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में ना जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुंचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था और पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकाल कर पूरा किया जाता था, और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी तस्वीर, आप क्या मानते हैं, किस तरह से बदल दी?
3: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज प्रभावित करती है, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहां पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम

0: टायर करके उसके पापा वहाँ पानी ले लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बताया सावनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी, एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशनबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इंप्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैचरेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान कैचरेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के। तो टू और थ्री इंपॉर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते हैं, नर्मदा डैम उन्होंने कंप्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं, देन एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व। ये कैचरेन एग्जाम्पल है यहाँ पे, सो जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितनी भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते, उसको संचय करके रखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है, और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें तीन ये था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बकरानंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँ, हम सोनी योजना की बात कर रहे थे, तो सोनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
2: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। सोनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है, और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है, और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह जो आप भेजते हैं, तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है, कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
0: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है, एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है, वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं, तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया, तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। सुजलाम, तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
0: सुजलाम सुफलाम अगेन दैट इज अगेन ए वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था, एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल

0: के कार्यक्रम किया, वो भी सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ, तो अगर अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गांवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है, और कई ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
2: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए, सुजलाम सुफलाम जो योजना है, ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया, लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है, और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है। उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ, हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए, पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है। उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल पारंपरिक, आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं हैं, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके, आपने कहा, पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
2: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है। वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया, तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
3: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वॉस ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM, तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं है कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठ को तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन देने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी के बचत का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में

0: जाते हैं, वो स्टैगन वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते हैं, वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे,
1: जी
0: क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ
1: बिल्कुल
0: प्रयोग कर सकते थे, तो
1: जी
0: ये एक नया सोच था ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था, तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके
1: करके
0: रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का तो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
2: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं।
1: जी
2: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है, उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे,
1: जी
2: बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहां बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में, और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए, पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
0: रीयूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बट आई वुड से दैट मोर देन रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, हमको व्हाट वी शुड लुक एट इज रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर। स्वेज वाटर को भी ट्रीट करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% वाटर यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, व्यवसाय होता है, तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होते हैं वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का, उसे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है, उसी तरफ से हमको इन्वॉल्व करना है। और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट डुअल पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेज आते हैं उसमें डुअल पाइप लगाए और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में, लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज कर सकते, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी

0: जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को, उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
1: ये एक आई वुड से अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेड फोर्ट से, दैट वाज हेडिंग एस द वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू दी फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गाँव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल के सर पर लेके आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इंपॉर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन, हाउस फॉर द वुमन, गिव सेविंग दम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन, ए ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया। सेकेंड, अच्छा पानी, पीने का पानी, पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था, तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसके वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया, एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट। ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हो, दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस। एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड, व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल इन यूएन, में दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हमें कर पाया, इतना बड़ा काम कैसे कर सके, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है। और जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का, उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का, प्लम्बर्स का, लोकल का करना, ये सब जल जीवन मिशन में का हिस्सा है, एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस।
0: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक, क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहाँ फोकस पानी पहुँचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव है और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है, जुड़ गए हैं, और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है। और जहां तक बात आगे के लिए है, तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है, इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल, उसकी संस्कृति जो विकसित हुई वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को, जो जल के जो संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अब यह केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो।
0: जी,
2: चुनौती यही है,
0: यही चुनौती है, और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना, इससे निपटना है। और
2: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
0: जाना ही चाहिए।
2: जी हाँ,
0: और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है। अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
1: दिस वंडरफुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें, बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहां बरसते हैं वहीं वहीं को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं। सेकंड, पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, महिला,

0: में किस तरह से बदलाव आया है?
1: देखिए, ये अवधारणा तो नई तो है नहीं, लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो यह है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच रही, ठीक है। दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है, जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है, आत्म प्रतिबद्धता, वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना, पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए, कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए, जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है। और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की, कि पानी की संभावना, पानी की मौजूदगी, कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो हैं वो विकसित की जाएं, उनको एडॉप्ट किया जाए। जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी है, जो मोटे अनाज है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है।
0: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: इंडिया में 85-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे यहाँ वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था। एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन पीएम केएसवाई, हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रचार किया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी एक कर लिया, और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वी विल बी सेविंग अ लॉट लॉट लॉट वाटर।
0: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर से धो रही, और इस तरह से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी है सिर्फ एक नल तक पहुँचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरेंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां।
5: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
6: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नागोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महा

0: मुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
1: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
0: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा। सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज। अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता। अब जापान से अगला मुकाबला।
1: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पेडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
2: आईजी नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
0: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
3: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्सा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
4: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
0: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले

0: मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
0: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक

0: कैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कन्फर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
1: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेकबॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए। परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेकबॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेकबॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दाव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहाँ जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहाँ मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेकबॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेकबॉल की पहचान जरूर बन गई।
1: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
0: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही हैं कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई, जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.68

0: 3 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा दहिया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के 3 मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपेक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉप टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रैजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ 2-2 हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
2: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जिन्होंने 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
1: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
4: अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:20 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।